भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनयमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमारथी भेष धरे यमदूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज के। श्री राम लला भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, जय जय श्री राम, जय जय

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

पंचांग के मुताबिक आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। श्रोताओं, श्रावण के इस पवित्र महीने की पवित्र सुबह के पवित्र प्रसारण में आप सभी का स्वागत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, इस पवित्र श्रावण के इस पवित्र सुबह में फिर एक बार मैं शाइस्ता बुखारी आप सबको स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम श्रावण महीने की बात कर रहे थे, श्रावण मास जिसे आमतौर पर सावन का महीना भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में भगवान शिव की भक्ति और आस्था का खास महीना माना जाता है। श्रोताओं, सावन आते ही पूरी प्रकृति में एक नई ताजगी भर जाती है। बादल, वर्षा, हरियाली, ठंडी ठंडी हवाएं और पहाड़ों की खूबसूरती, ये सब मिलकर माहौल को पवित्र और दिल को शांत बना देते हैं। लेकिन श्रावण सिर्फ मौसम की खूबसूरती का नाम नहीं, बल्कि ये भक्ति

साधना, संयम और आत्मा मंथन का महीना भी माना जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में। हम आप तक यात्रा के हवाले से जो भी हम तक ताज़ा सूचनाएं पहुंचती हैं, हम तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द जो है हम अपने संवाददाताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे और आप तक आज दिन के हवाले से जो भी मालूमात है वो पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में मेरे साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता बुखारी।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन एआर की अरहदना चैनल के अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं डीटीएच के माध्यम से भी। जैसा कि अभी श्रोताओं हम आपको बता चुके हैं कि हम अब लगातार अपने संवाददाताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बीच जो है हमारे साथ रामबन से फिलहाल मोहम्मद तस्कीन साहब जुड़ चुके हैं। हम इनसे आज दिन के हवाले से जो है ताज़ा मालूमात, ताज़ा जो सूचनाएं हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद तस्कीन साहब, आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में।
1: जी बहुत शुक्रिया।
0: जी तो क्या सूरत हाल है आज के हवाले से? अभी अभी जो हमें सूचना मिली है कि यात्रा जो है मौसम के कारण फिलहाल जो है निलंबित कर दी गई है, तो इस हवाले से श्रोताओं को बताइए।
1: जी बिल्कुल, जम्मू से आज जो इस वक्त अगर पहले मौसम की बात करेंगे, मौसम जो है बारिशें हो रही है। रामबन बानहाल के सेक्टर में सुबह से हल्की हल्की बारिशें हो रही है। कल देर करीबन कहेंगे कि 12-1 बजे के बाद भी हल्का हल्का बारिश हुआ था, फिर

0: थम गया था, लेकिन आज सुबह से फिर बारिशें हो रही है। तो इस दौरान जो जम्मू से जो श्री अमरनाथ यात्रा आनी थी तो वो आज सस्पेंड कर दी गई है, उसे आज जम्मू से चलने की इजाजत नहीं दी गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि बारिशों की वजह से, पिछले बारिशों की वजह से सिर्फ एक ही मार्ग से यानी सिर्फ बालतल से यात्रा को भेजा जा रहा है, लेकिन आज उसे सस्पेंड किया गया है जम्मू से। तो फिलहाल बारिशें हो रही है और ट्रैफिक जो है नेशनल हाईवे का भी हाईवे ट्रैफिक के काबिल है और ट्रैफिक चल रहा है। जो तो इस दौरान जो बालतल से वापस जो डाउन कानवाई है उसमें भी जो कानवाई है वो वापस आ रही है, यानी उसे अलाउ किया गया है जम्मू की तरफ आने के लिए। 28वां बेच है जो बालतल से वापस जम्मू की तरफ आ रहा है, इसमें 1202 यात्री है आज के इस जो काफला है कश्मीर से जो आ रहा है, जो कानवाई है यात्रियों की, तो इसमें 44 गाड़ियां शामिल है और 1202 यात्री जो है वापस कश्मीर से बालतल के रास्ते से जम्मू की तरफ आ रहे हैं और वो शुरू हुए हैं वहां से सफर करना।
1: यानी ये वो यात्री हैं जो दर्शन पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं।
0: बिल्कुल, जो दर्शन मुकम्मल कर चुके और 5 लाख के करीब तादाद पहुंचने वाली है यात्रियों की जो दर्शन कर चुके हैं अब तक पवित्र गुफा के। इस दौरान जो कल रात से जो जैसे कि हम रोज श्रोताओं को बोलते हैं कि 3 बजे के बाद और 2 बजे के बाद जो कश्मीर जाने वाली यात्रा होती है या जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें रोका जाता है रामबन डिस्ट्रिक्ट में, बानहाल और रामबन में तो उन्हें रोका गया था, लेकिन उनमें बहुत सारी गाड़ियां हैं यहाँ रामबन और बानहाल में यानी चंद्रकूट के यात्रा निवास और बानहाल में, तो उन्हें अलबत्ता कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी और फ्रेश कोई भी कानवाई आज जम्मू से अलाउ नहीं की गई है क्योंकि मौसम रात से ही खराब है। तो आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो शायद इसी के पेश नजर जो हुकाम है उनने फैसला लिया है कि आज जम्मू से यात्रा को कश्मीर की तरफ आने की इजाजत नहीं होगी।
1: क्या पहले से यहाँ पर कुछ यात्री है जो कल ही आए थे और अभी उनके दर्शन नहीं हुए हैं, क्या उनको अनुमति मिलेगी वहां जाने की?
0: और फिलहाल उन्हें यहाँ से जो मतलब कल रात को जो रोजाना जो जब 3 बजे के बाद जो कट ऑफ टाइमिंग रखी गई है कि बानहाल से आगे कोई यात्री अनरजिस्टर्ड यात्री या जो टूरिस्ट होंगे उन्हें जाने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह रामबन में 2 बजे के बाद से ये जो कट ऑफ टाइमिंग होती है, तो इसमें जो ट्रैफिक होगा इसे फिलहाल कश्मीर की तरफ रवाना किया जाएगा जो बेस के अब चाहे बालतल में हो या चाहे श्रीनगर में उन्हें रोका जाता है, तो उन जगहों तक उनको रवाना किया जाएगा। फिर आगे का जो वहां का मैनेजमेंट फैसला करेगी कि क्या वो वहां से प्रोसीड करेगी टुवर्ड्स होली के, तो वो बाद में डिसीजन उनकी तरफ से लिया जाएगा। लेकिन जो छोटा मोटा ही ट्रैफिक है आज जो यहाँ रुका हुआ था रात से उसे कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी, अलबत्ता जम्मू से कोई ट्रैफिक आज यात्रा का नहीं आएगा।
1: जी मौसम के हवाले से हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कुछ जो है आज भविष्यवाणी की गई है मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा?
0: देखिए मौसम मुस्मियात ने पहले ही बारिशों का जो आशंका जाहिर की है 8, 9, 10 तारीख 1-2 दिन के लिए ये ज्यादा खराब मौसम की पेशनगोई की गई, जिसमें हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों की पेशनगोई कर रखी है। उसमें खासकर जम्मू डिवीजन, खासकर ये चिनाब वैली का जहां से नेशनल हाईवे का बेशतर पार्ट हमारा गुजरता है रामबन डिस्ट्रिक्ट से, तो उसमें बारिशों का कहा गया है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। तो वही उसी सिलसिले के तहत बारिशें हो रही है जो उसने पेशन गोई की है, उसी के एन मुताबिक अगर कहेंगे तो गलत ना होगा कि बारिशें हल्की हल्की हो रही है। तहम इसका अभी तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई असर नहीं पड़ा है, समोती फिलहाल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसमें अगर कहेंगे उधमपुर के सेक्टर में या रामबन के सेक्टर में, खासकर उधमपुर के हिस्से में पिछले कई रोज से अगर कहेंगे तो 18 जुलाई से वो जो स्लाइडिंग का प्रोब हुआ है देवल का इलाका है, समरूली का इलाका है, उस वजह से हाईवे उस एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें, लेकिन यात्रा पर इसको कोई असर नहीं आने दिया गया। हाईवे के बंद होने के बावजूद हाईवे को यात्रा के लिए आम तो जब भी यात्रा आई तो उसको पैसेज दिया गया, उसे चलाया गया, उसे निकाला गया वहां से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या ट्रैफिक पुलिस है या पुलिस है उनकी तरफ से, लेकिन फिलहाल आज जो मौसमी हाल के पेश नजर यात्रा को रोक दिया गया है जम्मू में।
1: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए मोहम्मद तस्कीन साहब। तो श्रोताओ ये थे रामबन से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन साहब, जो वहां के हवाले से जो है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी
1: श्रोताओ आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में, आगे भी आप तक

मालूमात पहुंचाते रहेंगे। जो जो सूचना हम तक पहुंचेगी, हम तुरंत आप तक वो सूचनाएं जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: ಋಗ್ವೇದೀಯ ಗಣಪತಿ ಸೂಕ್ತ।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। आज इस विशेष प्रसारण में मैं आपकी मेज़बान बनी हूँ, आपके साथ शाइस्ता बुखारी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम लगातार जो है अपने संवाददाताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी हमने कुछ देर पहले ही जो है हमारे रामबन के जो संवाददाता है तस्कीन साहब से हमने राबता किया, और अब लाइन पर बने हैं इस वक्त जावेद मेहराब साहब जम्मू से। हम रास्त इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जावेद मेहराब साहब, आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में।
2: बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी जावेद साहब, तो जम्मू में जहां से यात्रा शुरू होती है, तो क्या सूरत हाल है वहां से?
2: देखिए, अभी यहां जम्मू के निवास स्थान से आज तीर्थ यात्रा को चलने की अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन अब इसमें स्थगित रहने का ये बुनियादी कारण जो है वो कई बार मौसम भी होता है, और चूंकि मौसम महकमा मौसमियात की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि 8 से लेकर 9 से लगभग उन्होंने कहा है, ये 9 से लेकर 11 तक मौसम जो है वो खास तौर पर जम्मू में येलो जम्मू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 9 से लेकर, तो उसका असर आज भी दिख रहा है। यहाँ आज सुबह से ही आसमान पर बादल छाए हुए हैं।
1: जी जी।
2: और चूंकि तीर्थ यात्रा की जो संख्या है अब कम भी होती हो रही है, सिर्फ पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा का अब जबकि सिर्फ 3 सप्ताह का वक्त रह गया है, आखिरी पड़ाव में है अभी तीर्थ यात्रा, और 3 सप्ताह के पहले बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी लगभग कोई 4,76,000 को पार कर गई
1: जी
2: है
1: जी।
2: तो एक बड़ा आंकड़ा,
1: बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल,
2: अभी तक श्रद्धालुओं को बिना किसी बाधा के लाखों श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ जाने की इजाजत भी मिली, अनुमति मिली, और पूरी संस्थानों के साथ मिलकर

0: सबने इन तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं को दर्शन करने की भी उन्हें उन्हें मौका मिला और दर्शन कर वापस अपने घरों को भी लौट रहे हैं। लगातार जम्मू के ही इस यहाँ जो रेलवे रेल के माध्यम से या सड़क के माध्यम से वो यहाँ से अपने घरों को भी लौट रहे हैं। तो ये अब तीन ही हफ्ते रह गए हैं,
1: जी जी।
0: इस तीन सप्ताह का वक्त रह गया है इस आखिरी पड़ाव में।
1: जी जी।
0: संख्या जो है वो कम है लेकिन जोश जज्बा यहाँ और जो इंतजाम है या जो प्रबंधन किए गए हैं यहाँ अपने निवास स्थान भागवती नगर में उसमें किसी तरह की कोई
1: जावेद
0: जी पहले ही प्रशासन जो है वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कई बार जो फैसला करती है तीर्थ यात्रा को अनुमति ना देकर वो श्रद्धालुओं के ही लिए होती है, उनकी सुरक्षा के लिए ही यह कदम होता है।
1: जी
0: और
1: जी।
0: आज भी ऐसा ही हुआ, आज अनुमति नहीं मिली लेकिन अनुमति मिलेगी। अभी तीन सप्ताह का वक्त है, लगभग 21 दिन का वक्त अभी बाकी है और तीर्थयात्री जो यहाँ बने हुए हैं उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगर आज नहीं मिली इजाजत तो जैसे ही मौसम साफ होगा
1: जी
0: और
1: जी
0: उन्हें इजाजत मिल जाएगी। जी
1: जी जी हम भी नहीं चाहते कि हमारे जो भी यात्री मेहमान हैं उन कहीं किसी भी तरीके से जो है कोई भी रिस्क लिया जाए, क्योंकि उनका जो जीवन है, उनकी जो जान है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जावेद साहब, हम जानना चाहेंगे, चूंकि श्रावण का जो महीना है ये यात्रा के हवाले से बहुत ही मजहबी एतबार से अहम माना जाता है, तो क्या सरगर्मियाँ रहती हैं इस इन दिनों जो है यात्री यात्रा के द्वारा?
0: देखिए, इस पूरे महीने में इस सावन के महीने में खास तौर पर पूजा अर्चनाओं का जो सिलसिला है वो यहाँ प्राचीन मंदिरों में, यहाँ के खास तौर पर जो यहाँ के प्राचीन मंदिर है उनमें खास तौर पर देखा जा रहा है और निवास स्थान भगवती नगर में भी उसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ के भी परिसर में पूजा अर्चनाओं का सिलसिला जारी है और इस दौरान जो स्थानीय कलाकार हैं उनमें वो भी भजन कीर्तन और श्रद्धालुओं को लुभाने के लिए ये तमाम तरह की जो पूजाएं हैं वो यहाँ की जा रही हैं ताकि श्रद्धालु पूरी तरह से इस सावन के महीने में, क्योंकि ये खास तौर पर माना जाता है जो भगवान शिव हैं उनकी खास तौर पर पूजा इस महीने में की जाती है।
1: जी,
0: तो यहाँ के जो प्राचीन मंदिर हैं उनमें न सिर्फ स्थानीय लोगों का रश होता है बल्कि श्रद्धालु भी कई बार जो यहाँ के होटलों में, यहाँ के अलग अलग जगहों पर जो निवास रखे हुए हैं वो भी यहाँ इन स्थानों पर पहुंचकर अपनी हाजिरी देते हैं और इन पूजा अर्चनाओं में भरपूर हिस्सा लेते हैं और यहाँ का जो वातावरण है वो एकदम भक्तिमय है, क्योंकि इस खास महीने में खास तौर पर तमाम यहाँ के शिव स्थलों में पूजा अर्चनाओं का सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक जारी है। कई मंदिरों में, कई प्राचीन मंदिरों में आरतियां, महाआरतियां भी हो रही है और वहां भी श्रद्धालु पहुंचकर उनमें हिस्सा लेते हैं और खास तौर पर जो यहाँ का माता वैष्णो देवी का जो द्वार है
1: जी जी।
0: उस तरफ भी तीर्थयात्री जो है इस अपने, क्योंकि वक्त के हिसाब से जिनके पास वक्त पहले होता है वो पहले माता वैष्णो देवी के द्वार की तरफ जाते हैं, जो बाद में दर्शन कर वापस यहाँ लौटते हैं वो उसके बाद उन्हें मौका मिलता है, लेकिन ये मौका कोई यहाँ छोड़ता नहीं है और यहाँ के प्राचीन मंदिरों में उस तरह के सभी तरह के जो जो पूजा अर्चनाएं होती हैं वो खास तौर पर देखने को मिल रही हैं और जो तीर्थयात्री भी हैं वो भी अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और खास तौर पर इन पूजा अर्चनाओं में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, साधु साध्वी सभी शामिल होते हैं, क्योंकि मंदिरों के शहर में तमाम जगह पर, तमाम स्थानों पर आप देखेंगे कि एक तो मंदिरों में पूजा अर्चनाएं हो रही है, दूसरा भजन कीर्तन चारों तरफ अलग तरह से एक अलग तरह का एक माहौल होता है इस पूरे इस सावन के महीने में, तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है और तीर्थयात्री भी उन्हें मलाल नहीं होता है कि अगर आज तीर्थयात्रा नहीं गई तो ये प्रशासन की तरफ से लिया गया एक ऐसा कदम है जो उनकी सुरक्षा के लिए ही दिया गया है। तो उन्हें पहले दिन से ये बताया जाता है कि मौसम, और क्योंकि आगे भी सिर्फ मौसम का सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही असर नहीं होता है, आगे भी इस तीर्थ यात्रा को हर एक यात्री को
1: कठिन पड़ाव होते हैं,
0: जो है वो बड़ी जिम्मेदारी होती है।

0: चाहिए और उसी जिम्मेदारी को देखते हुए ये कदम लिया जाता है।
1: जी जी।
0: और कल भी जैसा कि खुद जो है यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के मद्देनजर सड़क को बेहतर की सड़क की खास तौर पर निगरानी और बंद होने के समय मिशनरी और कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर काम पर लगाने के उन्होंने निर्देश दिए और तमाम बाधाओं को खत्म कर ट्रैफिक की आवाजाही को यकीनी बनाने का उन्होंने खासतौर पर अफसरों को, और जो उनकी बात हुई राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो अथॉरिटी है उनसे जो बात हुई, तो वो खुद निरीक्षण करने वहां पहुंचे थे और खुद उन्होंने इस बात का जायजा लिया कि सड़क की जो हालत है या सड़क को कई बार मौसम, क्योंकि इस बार बारिशें जो भी हुई है वो जम्मू कश्मीर में लगभग सबसे ज्यादा हुई है,
1: बिल्कुल,
0: और खासतौर पर इन पहाड़ी इलाकों में कई बार भूस्खलन के भी जो वाकयात हुए हैं और कई जाने यहाँ के पहाड़ी इलाकों में तलफ हुई हैं, तो उसको देखते हुए खास तौर पर ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए, ये सिर्फ प्राथमिकता तो हमेशा श्रद्धालुओं की होती है चलाने की, लेकिन उसके अलावा भी जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है ये हमारी खास तौर पर जम्मू कश्मीर की नींव की हड्डी है, क्योंकि यहीं से गुजरकर तमाम जो माल साजो सामान जो पहुंचता है खास तौर पर घाटी के लिए, और घाटी से भी जो आज के टाइम पे जो फ्रूट और बाकी जो चीजें पहुंचती
1: है
0: उनके लिए भी उसको यकीनी बनाना
1: जरूरी
0: है। और उसी के मद्देनजर चूंकि अब ये मौसम जो होता है इसमें बाबा बर्फानी के दर्शन के भी तीर्थयात्री होते हैं, उन्हें हालांकि पहली प्राथमिकता के साथ हमेशा से उसकी कट ऑफ टाइमिंग रखी गई है, ट्रैफिक विभाग को खास तौर पर कहा गया है कि किस तरह से आपने पहला पैसेज देना है श्रद्धालुओं को, तो उसको इस सिलसिले में भी तमाम तरह की बातें की गई और खुद मुख्यमंत्री जैसा मैंने कहा कि कल खुद उन्होंने उस बात की का निरीक्षण लिया और दिशा निर्देश भी दिए कि बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के साथ साथ जो है ट्रैफिक की आवाजाही को इस खास तौर पर इस मौसम में बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए।
1: जावेद साहब, अगर इस वक्त की बात करें, इस वक्त क्या बारिशें हो रही हैं या इस वक्त थम गई?
0: यहाँ मैदानों में कई बार बारिशें कम होती हैं, मैदानों में अभी बादल बने हुए हैं, बारिशें होने की संभावनाएं हैं, लेकिन बारिशें कहाँ किस तरफ, क्योंकि बरसात के इस मौसम में सावन के
1: कुछ नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल
0: मौसम एक इलाके में बारिश होती है तो दूसरे इलाके में नहीं होती।
1: जी जी।
0: तो इस दौरान भी जो बारिशें हुई हैं जम्मू कश्मीर में उनमें सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में ही बारिशें हुई है, मैदानों में थोड़ी कम बारिशें हुई।
1: जी जी।
0: और खास तौर पर जो बादल फटे हैं वो खास तौर पर इन्हीं इलाकों में पहाड़ी इलाकों में फटे हैं, तो जिसकी वजह से कई बार परेशानियां भी आई, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रशासन और तमाम संस्थान इस इतने बड़े आंकड़े को, जैसे मैंने कहा कि 4,76,000
1: जो बहुत बड़ा आंकड़ा है
0: की संख्या पार कर गई है।
1: जी जी।
0: तो ये एक ही ये लगभग कोई 29 वह जत्था था कल का जो कल यहाँ से रवाना हुआ था, और आज लगभग 30 वह लगभग इस 29 इन जत्थे में समझ ले आपकी इतने बड़े आंकड़े को पार कर गई है, और खास तौर पर जो इंतजामात पूरी घाटी में और उसके अलावा जो जम्मू में रखे गए हैं ये उन्हीं का नतीजा है और उसी की कामयाबी है तमाम संस्थानों की जो पूरी तरह से युद्ध स्तर पर ये लगे हुए हैं और न सिर्फ प्रबंधन यहाँ बनाए हुए हैं बल्कि तीर्थ यात्रा को भी बड़ी कुशलता के साथ और बहुत मेहमान नवाजी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ इन श्रद्धालुओं को भी रवाना करते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, और सभी जो तीर्थयात्री यहाँ पहुंचे हैं उन्होंने बाबा बर्फानी के द्वार में हाजिरी देकर वापसी भी की है, अपने घरों को भी लौटे। अब ये आखिरी पड़ाव है और ये चैलेंज जरूर है, बारिश का मौसम की भविष्यवाणियों का, मौसम की परिस्थितियों का चैलेंज जरूर।
1: देखिए, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर फिर ये कठिनाइयाँ जो है वो भी आसानियों में बदल जाती हैं, हम भी यही प्रार्थना। जी जी,
0: जरूर है, लेकिन तमाम संस्थान लगे हुए हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तीर्थ यात्रा जो है वो ऐसा तरीके से यहाँ से,
1: बिल्कुल हाँ, हमारी भी यही प्रार्थना है कि जो मौसम है वो जरा बेहतर हो जाए और वर्षा जो है वो जरा देर के लिए थम जाए।

करके जो भी श्रद्धालु है उनको ज़रा इंतज़ार ना करना पड़े और वो फौरन जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल करें। आपका बहुत शुक्रिया जावेद मेहराब साहब जो मुँह से, ये थे श्रोताओं जावेद मेहराब साहब जो मुँह क्षेत्र से जो वहाँ की तफसीलात हमें दे रहे थे। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता बुखारी। श्रोताओ, दर्शन की उत्साह जितनी अहम है उतनी ही अहम यात्रियों की सुरक्षा भी है, आप सब की सुरक्षा है। मौसम में खराबी के कारण यात्रा को वक्ती तौर पर निलंबित किया गया है, लेकिन याद रखिए कि श्रद्धा कभी नहीं रुकती। संयम, धीरज और प्रशासन की सलाह पर अमल करना ही एक सच्चे यात्री की पहचान है। अब बने रहिए इस विशेष प्रसारण में। हम आगे भी जो है हमारे मजीद जो हमारे संवाददाता हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो मुख्तलिफ क्षेत्रों से जो है वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की जो सूरत हाल है उस हवाले से हमें सूचनाएं देते रहेंगे। आप बने रहिए और सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण।

श्रोता आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, अगर आपको यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता दरकार हो तो नज़दीकी सेवा केंद्र, पुलिस या श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क करें, या फिर हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आप राबिता कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। एक बार फिर से मैं नंबर दोहराती हूं कि 9596990954। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर भी डायल कर सकते हैं। श्रीनगर का जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800-1807199, 1800-1807199। और जम्मू का जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800-1807198। तो आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में। इसी बीच जो है हमारे तक एक दर्शन रिपोर्ट पहुंचा है, जो कि हमें सूचना मिली है कि दुमेल गेट जो है वहां से, वहां पर जो कुछ यात्री जो है उनको अनुमति मिली है दर्शन के लिए। जो ये काफिला है वो तकरीबन 2000 से जायद यात्रियों पर मुश्तमिल है, जिसमें 1974 जो है वो पुरुष शामिल हैं, जिनमें 580 तकरीबन

महिलाएं शामिल हैं। इसी तरह से 21 बालक, 19 साधु, 5 साध्विया, 4 ट्रांसजेंडर और 301 जो है सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोताओं, समाचार का वक्त हो रहा है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषय शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक है। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
2: इस कॉन्वोकेशन में 3,000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
1: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
3: यूपीआई के जरिए लेन देन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेन देन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक एफसीआरए पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: We have seen the comments.
5: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: Regulate the flow of foreign funds.
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
5: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त

0: तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
3: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केओंझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
4: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
6: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही तीन विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के तीन विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जलभराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during its convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies Apex Digital Payments Body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation is country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
8: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honours, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing and interdisciplinary research. In a social media post, the Prime Minister has said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institute. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
7: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has thanked Prime Minister Modi after the two leaders reviewed progress in various aspects of partnership. Mr. Netanyahu wrote in a social media post responding to Mr. Modi's post regarding the conversation between the two leaders. During the phone call on Thursday evening, both leaders reviewed progress on various aspects of the India-Israel Special Strategic Partnership and also discussed the current situation in West Asia. Payments Council of India, PCI, has announced that UPI will continue to be free for consumers. We have a report.
9: In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. The PCI added that banks, fintech companies, NPCI and the RBI have been investing in technology, cybersecurity, fraud prevention and innovation to maintain UPI's reliability. The PCI clarified that any applicable merchant service charges, which are commercial arrangements solely between merchants and payment providers, do not mean that consumers pay to use digital payments. It highlighted that UPI has become a critical national digital infrastructure used daily by many citizens. The PCI further noted that as transaction volumes continue to grow, sustained investment in security, resilience, innovation, fraud prevention and infrastructure will remain essential to ensure UPI reliably serves consumers and businesses for years to come. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
7: India has rejected the objections raised by a US lawmaker on the proposed Foreign Contribution Regulation Amendment Bill, saying that its legislative matters are its internal affairs in which the decisions are taken by the Parliament. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi while replying to a question in this regard.
10: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds.
7: On safety and security of Indian vessels and seafarers, Mr. Jaiswal said, New Delhi attaches high priority to the issue. He said Indian missions all across Gulf region are in constant contact with the Ministry of Shipping and Maritime Authorities in those countries. He said India continues to call for a safe and unimpeded navigation and free flow of commerce through international waterways.
10: While we are coordinated with Ministry of Shipping and local authorities in West Asia in the Gulf region, we continue to call for safe and unimpeded navigation and free flow of commerce through international waterways. We also call upon all parties to refrain from targeting civilian infrastructure and civilians, especially commercial vessels and seafarers.
7: Replying to the defense pact between Pakistan, Turkey and Saudi Arabia, the spokesperson said the development is being closely followed. On recent defense pact between Pakistan and Somalia, Mr. Jaiswal said India continues to follow these developments closely. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will inaugurate the new office of the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited today in Mumbai. The Home Minister will also interact with the representatives of State Urban Cooperative Bank Federations and District Associations of Maharashtra. During the program, a memorandum of understanding will be exchanged between the corporation and the National Forensic Sciences University. The collaboration will play an important role in strengthening cybersecurity, technological capabilities and institutional capacity in the urban cooperative banking sector. Mr. Shah will later attend the BSE International Convention Center alongside Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. He will also inaugurate a security operations center to strengthen the cybersecurity of urban cooperative banks. Union Education Minister Prahlad Joshi has reaffirmed that government is committed to ensure timely and effective execution of programs aimed at strengthening India's education ecosystem. He said this while chairing a meeting with senior officials of the Education Ministry held last night after returning to New Delhi from the 13 BRICS Education Ministers meeting. In a social media post, Mr. Joshi said the meeting reviewed various ongoing initiatives of the ministry and discussed implementation priorities to ensure their timely and effective execution. He said that the meeting also provided an opportunity to align government's efforts with the vision of building an inclusive, future-ready and globally competitive

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, जैसा कि आप तक ये सूचना पहले ही पहुंच चुकी है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है फिलहाल के लिए निलंबित कर दी गई है, जो कि वादी की गाठी की जो मुख्तलिफ क्षेत्र हैं, मुख्तलिफ इलाके जो हैं, वहाँ मुसलसल वर्षा हो रही है, जो कि ख़राब मौसमी परिस्थितियों के पेश नज़र जो है यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज जम्मू से यात्रा को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम अपने संवाददाता रहीम रिजवान से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप तब तक सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण।

0: श्रोताओं, इसी बीच जो है हमारे गांधरबल के जो संवाददाता है रहीम रिजवान साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। रहीम रिजवान साहब, आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में।
1: धन्यवाद आपका भी मैम।
0: जी रिजवान साहब, क्या सूरत हाल है आज अगर गांधरबल जिला की बात करें तो?
1: गांधरबल जिले के हवाले से अगर हम यात्रा के बारे में बात करेंगे तो पहले हम बालतल के पूरे क्षेत्र में यात्रियों जो हमारे श्रोता हैं उनको बालतल के पूरे क्षेत्र में मौसम की स्थिति कैसी बनी हुई है और उस हवाले से हम उनको जानकारी देते हैं। तो आज बालतल के पूरे क्षेत्र में खराब मौसम के कारण सुबह सवेरे से ही वर्षा हो रही है। आकाश पर बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ऐसे मौसम में बाबा बर्फानी के भक्त यहाँ की सुंदरता का आनंद लेते हुए पवित्र गुफा की ओर धार्मिक रूप से प्रस्थान कर रहे हैं। यात्रियों में बीते दिनों की तरह आज भी पवित्र गुफा जाने की काफी उत्साह पाई जाती है। वह सुबह 3 बजे से ही तुमेल कंट्रोल गेट पर लंबी लंबी कतारों में बैठकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो 4 बजे उन्हें गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई।
0: जी जी,
1: सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज सुबह सवेरे बालतल बेस कैंप से 2893 श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी गई। सुबह 7 बजे तक दुमेल कंट्रोल गेट से आगे बढ़ने वाले इन श्रद्धालुओं में 1964 पुरुष, 579 महिलाएं, 21 बालक बालिका, 19 साधु, 5 साधियां, 4 रनर जनरल एवं 301 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। तो 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जो 28 अगस्त रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर इख्ताम पजीर होगी, बालतल मुख्य मार्ग से सुचारू रूप से जारी है। बीते दिनों के दौरान देश के विभिन्न भागों से 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालु ने पवित्र गुफा जाकर माथा टेका, शिवलिंगम के दर्शन से प्राप्त हुए तथा देश एवं घाटी की अमन शांति और विकास के लिए प्रार्थना की। इस तरह जिन श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन से जो प्राप्त हुए वे धीरे धीरे बालतल बेस कैंप पहुंचे जहां उन्हें अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया गया। इस तरह आज भी शिवलिंगम का दर्शन करके जो यात्रियों का बालतल बेस कैंप पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। तो बीते शाम तक 4619 श्रद्धालु ने पवित्र गुफा जाकर माथा टेका, शिवलिंगम के दर्शन से प्राप्त हुए वह धीरे धीरे देर शाम गए तक वापस सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचे। बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले इन श्रद्धालुओं में 2592 पुरुष, 1380 महिलाएं, 22 बालक बालिका, 58 साधु साधियां, 2 रनर जनरल एवं 558 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। जिन श्रद्धालुओं ने शिवलिंगम का दर्शन किया वे बालतल बेस कैंप पहुंचे तो उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष जिले प्रशासन गांधरबल ने यात्रियों के लिए हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, जिनमें भोजन, शौचालय की सुविधाएं के अलावा चिकित्सा सुविधाएं भी मयसर रखी गई हैं। तो आप श्रोताओं, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि बालतल मुख्य मार्ग से दुमेल कंट्रोल गेट से आगे आपको बहुत सारे पड़ाव, कठिन पड़ाव तय करने पड़ते हैं। तो इस दौरान ऊंचे पर्वतों के बीच आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। वो महसूस दूर करने के लिए चिकित्सा विभाग ने जगह जगह चिकित्सा केंद्र कायम किए हैं जहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं उपलब्ध रखी गई है।
0: बहुत बहुत खुशायन खबर है। बिल्कुल,
1: तो यात्रियों को जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी यहां तैनात है वो उन्हें वहीं पे फराहम करते हैं ताकि उन्हें इस तीर्थ यात्रा के दौरान किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जो बालतल में या अन्य पड़ाव पर जो हमारे पवित्र गुफा तक मुख्तलिफ पड़ाव आते हैं तो जहाँ जगह जगह लंगर लगाए गए हैं यात्रियों के लिए, जो सुबह 2 बजे से ही जो वहाँ सेवादार हैं वो सुबह नींद से जागते हैं और इन यात्रियों के लिए बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए वो भोजन तैयार रखते हैं। तो 3 बजे भोजन करने के बाद वो दुमेल कंट्रोल गेट पर रिपोर्ट करते हैं जहाँ वो लंबी लंबी कतारों में अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं और RFID कार्ड जो महत्वपूर्ण है उनके लिए, क्योंकि पंजीकरण करने के बाद उन्हें RFID कार्ड फराहम किए जाते हैं। तो अब बिना आरएफआईडी कार्ड जो है तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो उनके आरएफआईडी कार्ड बाजार तो चेक किए जाते हैं दुमेल कंट्रोल गेट पर, तो वो चेक करने के बाद उन्हें पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाती है। अलबत्ता जिला प्रशासन के द्वारा यात्रियों को बार बार यह सूचना दी जाती है कि ये कठिन रास्ता है बालतल मुखी मार्ग से, लिहाजा अपने साथ रेन कोट, लाठी, गर्म कपड़े और जूते और बेहतरीन जूते और इसके साथ साथ पानी की बोतलें और अन्य व्यवस्थाएं जो है वो साथ रखना
0: जरूरी
1: है।
0: बिल्कुल।
1: और लेकिन इस दौरान यात्रा के दौरान चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी सहयोग के लिए जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं और सुरक्षा कर्मी जो हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीकन आरसीसी 122 के अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन के अन्य विभागों के अधिकारी हैं, उनको चाकू चौबंद रखा गया है। वो आपकी सहायता के लिए हर पड़ाव पर मौजूद है।
0: जी जी।
1: इसके दौरान जो वर्षा हो रही है, इस वर्ष ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम हुई है। अलबत्ता अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि भारी वर्षा के कारण जो सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है जिससे लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, तो ऐसी घटना ही घटी तो इस दौरान जो भी अधिकारी हैं, सुरक्षा के अधिकारी हैं, मुख्तलिफ टीमें हैं, मुख्तलिफ एजेंसियां जो आज बालतल देश कैंप में चाकू चौबंद रखे गए हैं, तो वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। ट्रैक की सफाई बीकन के जरिए बार बार की जाती है, तो इसलिए जो आम दरख्त है यात्रियों का वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जारी है। और इस तरह बालतल मुख्य मार्ग से आज भी बीते दिनों की तरह जो तीर्थ यात्रा है वो सुचारू रूप से जारी
0: जी।
1: है।
0: रिजवान साहब, चूंकि श्रावण का महीना है जो मजहबी एतबार से जो है यात्रियों के लिए बहुत ही अहम माना जाता है, तो आस्था और भक्ति का क्या सा माहौल जो है इस वक्त बना हुआ है?
1: बिल्कुल, आस्था के बारे में बात करेंगे, उसी पे मुनसर है यात्रा, क्योंकि जो ही बाबा बर्फानी के भक्त जो यहाँ बालतल ही पहुँचते हैं तो वो यही से प्रार्थना करते हैं, उनके मन को शांति मिलती है। और इसके अलावा जो यहाँ पे सेवादार हैं वो यही आस लगा के बैठे हैं कि जो ही वो बाबा बर्फानी के भक्तों को जाने यात्रा पे जाने से पहले या वापस आने के बाद जो उनकी सेवा करते हैं से उनको जो बाबा बर्फानी का आशीर्वाद वो उन्हें मिलते हैं तो उससे प्राप्त होते हैं, तो उनको न सिर्फ मन को शांति मिलती है बल्कि वो साल भर खुश रहते हैं, क्योंकि बाबा बर्फानी का आशीर्वाद जो है वो उन्हें इसी से मिलता है। और लिहाजा बाबा बर्फानी के भक्त जो है जो देश के विभिन्न भागों से यहाँ पहुँचते हैं तो वो बिल्कुल ही आस लगाए बैठे हैं कि इस वर्ष उनकी यात्रा जो है वो सुखद तरीके पर संपूर्ण हो सके।
0: जी, अगर आंकड़ों की बात करें तो कहा जाता है कि तकरीबन 5 लाख से ज्यादा जो है वो ये आंकड़ा जो है पार कर चुका है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से और क्या संदेश रहेगा यात्रियों के लिए?
1: बिल्कुल, ये इस बार जो यात्री हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने गुफा जाकर माथा टेका, शिवलिंगम के दर्शन किए, तो सही बात है। कल दोपहर तक 4.5 लाख थे, इसके बाद देर शाम गए तक यात्री जो है वो पवित्र गुफा पहुंचते रहे, दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल पहुंचे, तो सही बात है 5 लाख से अधिक यात्री जो है वो पवित्र गुफा पहुंचे, उन्होंने वहां पे दर्शन किया, खुशाइन बात है। या इतने या संख्या में यात्री इस वर्ष यहाँ पहुंचे हैं देश के विभिन्न भागों से, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इस वर्ष जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं रखी गई हैं, चाहे वो सुरक्षा के हवाले से बात करेंगे या दीगर अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध रखी गई हैं, उसको देखकर यात्री संतुष्ट
0: नजर आ रहे हैं। बिल्कुल,
1: लिहाजा वो यही मैसेज बाहर पहुंचाते हैं देश के विभिन्न भागों में कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो आपके लिए बेहतरीन उपलब्ध रखी गई हैं, लिहाजा हर एक को चाहिए कि वह जाकर यहाँ ये तीर्थ यात्रा में शिरकत करें। और बार बार ये श्रोता ये भी कहते हैं कि हमारे यात्री कि जिसने कभी कश्मीर नहीं देखा है उसने कुछ नहीं देखा है, लिहाजा हर एक को चाहिए कम से कम एक बार अपनी जिंदगी में वह यहाँ आकर
0: गांठी का रुख करे। बिल्कुल,
1: खासकर पवित्र गुफा जाकर शिवलिंगम का दर्शन करें।
0: जी बिल्कुल, हम यहाँ उनकी सेवा के लिए बैठे हैं और उनको स्वागत करने के लिए जो है तैयार हैं। यहाँ तक कि प्रशासन के साथ जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो भी बड़े उत्सुक होते हैं कि किस तरह से जो है मेहमान यहाँ आए और हम उनका स्वागत करें।
1: हम बार बार श्रोताओं को ये बताते हैं अवश्य कि मकामी लोगों के बिना ये तीर्थ यात्रा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुश्किल ही है, बल्कि मुश्किल ही नहीं बल्कि महाल भी है, क्योंकि ऐसे ही हमारे मकामी लोग ही है, चाहे वो पौनी वाले हैं, खच्चर वाले हैं, डांडी वाले हैं, या दुकानदार हैं, मकामी लोग हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ विभागों में जो सरकारी अधिकारी यहाँ बैठे हैं वो भी जम्मू कश्मीर के ही हैं, तो उनके बिना ये तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती है, लिहाजा वो जगह जगह पे तैनात है उनकी सहायता के लिए। हालांकि इसके दौरान अगर घोड़े वाले, खच्चर वाले, डांडी वाले, दुकानदार या बाकी लोग जो यहाँ पे अपनी खदमात अंजाम देते हैं वो कभी इससे थोड़ा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन इतना नहीं, ये खुद यात्रियों ने इतराफ किया इस बात का कि ये इनका कमाल है कि कैसे ये यात्रियों को अपने कांधों पे उठा के ऊंचे पर्वतों के बीच ये कठिन रास्ता तय करके उन्हें पवित्र गुफा तक आसानी से पहुंचाते हैं और आराम से सुरक्षित वापस पहुंचाते हैं दर्शन करने के बाद। मकामी लोगों का सबसे बड़ा योगदान है इसमें, ये यात्रियों ने खुद आकाशवाणी को बताया कि यहाँ की जो भाईचारा है, उखवत है और यहाँ की मेहमान नवाजी और इनका व्यवहार खास कर किस तरीके से यात्रियों को पेश आते हैं, तो ये हम कभी नहीं भूलेंगे कि ऐसा भाईचारा और ऐसा माहौल जो है वो धरती पे कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। लिहाजा जम्मू कश्मीर जो है वो इसमें रोजे अवल से ही माना जाता है, यहाँ की हम तवारीख
0: मेहमान नवाजी
1: बिल्कुल इतिहास में लिखा हुआ है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसा वातावरण जो है वो हमेशा ऐसा ही रहे और यहाँ के लोग जो है उनका उकवत भाईचारे की जो सदियों से चली आ रही यहाँ की रिवायत है उसको बरकरार रखा जाए।
0: बिल्कुल रिजवान साहब आपने सही कहा, बल्कि मैं तो इस विशेष प्रसारण में अक्सर बोलती हूँ कि जो सेवा भावना है यही इस यात्रा की जो सबसे बड़ी विशेषता है। आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रोताओ ये थे गांधरबल से रहीम रिजवान साहब जो वहाँ की हालात के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब।
1: शुक्रिया आपका
0: जी। श्रोताओ आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण, मेरे साथ में हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता बुखारी। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में, आगे भी बातें होंगी, भावनाओं की बातें होंगी और जो भी सूचनाएं हम तक पहुंचती है वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे और भक्ति संगीत तो हम सुनते ही हैं मिलकर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है, यानी जो सच्ची भक्ति से जल्द प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्रावण में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और अपने मन में श्रद्धा, प्रेम और पवित्रता का संकल्प लेते हैं। ये महीना हमें याद दिलाता है कि भक्ति सिर्फ मंदिर तक जाने का नाम नहीं, बल्कि अपने विचार, वाणी और व्यवहार को भी पवित्र बनाने का नाम है।

0: समवेत।
1: श्रोताओं, इस बीच हमारे साथ अनंतनाग के हमारे संवाददाता एस तारिक साहब जुड़ चुके हैं, वो लाइन पे मौजूद है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एस तारिक साहब, आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में।
2: बहुत शुक्रिया सैदा शाइस्ता जी।
1: जी,
2: श्रोताओं को मेरा सुप्रभात
1: जी।
2: 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के 36 दिन पूरे हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहलगाम मार्ग पर आज मौसम मजबूत तौर पे ओवरहालू रहने की संभावना है और अभी हल्की सी बारिशें भी हो रही है। इसके साथ साथ अनंतनाग क्षेत्र में भी बारिशें हो रही है
1: जी।
2: सुबह के बाद आसमान पर बादल मजीद छाए रह सकते हैं, जबकि दोपहर तक रुक रुक कर बारिशें की पेशगोई भी की गई है। पहलगाम में आज सुबह दर्ज हरारत 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जो दिन के दौरान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यात्रा के ऊंचे इलाकों में दर्जे हरारत नस्बतन कम रहने की संभावना है। चंदनवारी से पंचतरणी तक यात्रा मार्ग पर दर्जे हरारत 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने की तवक्का है, जबकि दोपहर के आसपास हल्की बारिशों के इम्कान 35 से 60% तक बताई गई है। इधर श्री अमरनाथ जी यात्रा की पवित्र गुफा के नजदीक दर्ज हरारत 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। यहाँ नमी की मात्र 95 से 98% तक रह सकती है, जबकि बादलों के सब बाज मकामात पर हद निगाह भी मुतासिर होने की इम्कान है, यानी कोहरा हो सकता है। दिन गुजरने के साथ हल्की बारिशें और वक्फे से गीला मौसम बरकरार रह सकता है। यात्रियों को यात्रा की भलाई मार्ग पर मौसम में अचानक होने वाली तब्दीली के पेश नजर एहतियात बरतने और इंतजामिया की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया गया। तो यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला है, ताहम इलाके में जारी बारिशों और मौसम की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर आज जम्मू की भगवती नगर आधार शिविर से बालतर यात्रा मार्ग के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा को आरजी तौर पर आज मुलतवी रखा गया, जबकि पहलगाम मार्ग से श्री अमरनाथ जी यात्रा को बदस्तूर आरजी तौर पे निलंबित रखा गया है। ताम श्री अमरनाथ जी गुफा में दर्शन का सिलसिला भी जारी है। 57 दिनों पर मुश्तमिल श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज से अब तक 4,76,683 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर चुके हैं, जबकि गुज़श्ता रोज 5,095 श्रद्धालु ने पवित्र गुफा में दर्शन किए और दर्शन का जो सिलसिला है अभी आज भी जारी है और लोग दर्शन करके निकल रहे हैं
1: जी।
2: यही आशा रखते हैं कि बाबा बर्फानी की सभी श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं पूरी हों और उनकी यात्रा सुखद सुरक्षित और मंगलमय रहे
1: जी। तकरीबन आपसे जानना चाहेंगे कि तकरीबन यात्रा जो है मौसम का मिजाज देखते हुए तकरीबन कब तक यात्रा जो है फिर से शुरू होने के इम्कान है?
2: मुझे लगता है जहाँ तक आज के जो प्रेडिक्शन है, जो मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई थी वो आज दिन के लिए है
1: जी।
2: तो कल वैसे मौसम में बेहतरी है और ज्यादातर ये जो बारिशों का जो सिलसिला वो रामबन में हुआ था, क्योंकि वहाँ इसके आगे आगाज से फिर वहाँ स्लाइड्स होने का खतरा रहता है
1: जी, जी, जी।
2: तो यात्रियों की वसी तर हिफाजत के लिए, एडवांस हिफाजत के लिए जो प्रशासन है कि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि नहीं आगे यात्रा को इस रिस्क में नहीं लिया जा सकता है, तो एहतियातन आज का दिन है, तो कल मुझे लगता है फिर यात्रा वहां से शुरू होगी बालतल के लिए। तो अभी पहलगाम के लिए कोई अभी निर्णय नहीं लिया गया है, जैसा भी कोई फैसला होगा तो हम भी श्रोताओं को बता देंगे
1: जी। जी जरूर। एस तारिक साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे जो कि श्रावण का महीना है और छड़ी मुबारक की जो पवित्र यात्रा है वो किन मकामात से गुजरती है और किस तरह से फिर जो है ये थोड़ा बहुत इस हवाले से श्रोताओं को बताइए।
2: जरूर, जो हमारी जो छड़ी मुबारक है ये दो बार आती है। पहले बार जब हम पिछले हफ्ते जो यात्रा आई थी
1: जी जी,
2: तो जो धार्मिक तरीके से होता है कि वहां से असल में यात्रा का आगाज होता है
1: जी,
2: लेकिन
1: जी।
2: वो उस वक्त श्री अमरनाथ जी की गुफा तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन वो सिर्फ पहलगाम जाते हैं, वहाँ भूमि पूजन करते हैं, उसके बाद वापस सूर्य मंदिर मटन चले जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, जो छड़ी मुबारक है दो छड़ी मुबारक जो है उनकी स्नान करते हैं, वहाँ भोजन करते हैं, वहाँ कुछ धार्मिक अनुशासन करते हैं, उसके बाद वापस वो श्रीनगर वापस जाती है। यहाँ से असल में आगाज होता है छड़ी मुबारक का, और उसके बाद जो आखिरी 3 दिन होते हैं, तो उन 3 दिनों में, 3 दिन पहले जब वहां से अखाड़ा बिल्डिंग श्रीनगर से यात्रा छड़ी मुबारक निकलती है,
1: जी
2: जो
1: जी
2: गिरी श्री महाराज के जो नेतृत्व में निकलती है, तो उनके साथ बहुत सारे साधु होते हैं, बहुत
1: बिल्कुल
2: सारे
1: जी
2: लोग होते हैं, तो वो पहले रफ तरतीब के साथ वो पहले पांपोर, पांपोर के बाद फिर वहां रुकते हैं, इसके बाद बिजबिहारा में छोटा अमरनाथ जिसे कहते हैं वहां रुकते हैं, उसके बाद वहां मटन आते हैं तो मटन में रुकते हैं, वहां भी कुछ धार्मिक कुछ अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली वो बीच में भी एक जगह रुकते हैं पहलगाम जाते हुए, तो उसके बाद पहलगाम में गौरी शंकर मंदिर पे वहाँ दिन भर रहता है, वहाँ बाद
1: पूजा अर्चना जी
2: बिल्कुल मंत्रों का वहाँ योग हो जाता है, उसके बाद भोजन वगैरह करने के बाद वो रात को वहीं रुकते हैं, उसके बाद दूसरी रात वो चंदनवारी से पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं, जिस तरीके से वो शिशुनाग या पंचतरणी में रुकते हैं, रात
1: बिल्कुल
2: के रात्रि रुकते हैं, उसके बाद दूसरी रात्रि होती है उनकी शिशुनाग में, तीसरी रात्रि फिर वो पहुंच जाते हैं बिल्कुल नीलम की जगह जहाँ दुमेल कहते हैं, दुमेल की जगह मिलते हैं, संगम की जगह,
1: जी
2: संगम में उसके बाद वहां रात्रि होती है, वो अर्ली मॉर्निंग वो यात्रा के आखिरी दिन वहां पोफटे की किरण के साथ ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं,
1: जी जी
2: वहां पूजा करते हैं, और इसी तरीके से मुकम्मल ये यात्रा भी होती है, और फिर वापस इन्हीं रास्तों से आते हैं, तो इस तरीके से ये पूरी जो श्री अमरनाथ जी यात्रा और ये छड़ी मुबारक एक साथ चलती है, क्योंकि इसका धार्मिक रूप है, इसका धार्मिक जवाज है उनके साथ, वो
1: जी
2: इन्हीं
1: जी
2: जगह जाती है जहां से लॉर्ड शिवा ने अपना सफर किया था, पांच
1: जी
2: जगहों से, उन पांच जगहों के जरिए से ये
1: जी
2: छठी मुबारक वहां जाती है। जी,
1: जी बहुत शुक्रिया इन मालूमात
2: तफसील
1: के
2: में
1: लिए।
2: इंशाल्लाह, इसकी
1: बिल्कुल
2: तफसील में इंशाल्लाह बिल्कुल यात्रा के छठी मुबारक के आगाज से ही तफसीली तौर पे
1: जी जी जरूर
2: श्रोताओं को बता दूं कि पूरी हिस्ट्री बता दूंगा कि
1: जी जी
2: कहां
1: हमें
2: कहां
1: हमें
2: पे क्या हुआ
1: इंतज़ार
2: था धार्मिक
1: रहेगा
2: रूप से।
1: और श्रोताओं को भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि इस वक्त इस महीने में अगर इस बार देखें कि यात्रियों की जो आस्था और भक्ति का क्या माहौल बना हुआ है अनंतनाग में, वहाँ के जो बेस कैंप्स हैं। जी
2: दरअसल इस माह में आखिरी दिनों तक बहुत गहमा गहमी रही, उसके बाद जब वहां से यात्रा निलंबित इस बहाने रखी गई कि रोक दी गई है, क्योंकि यात्रा के जो ट्रैक है, जो हमारा जो लंबा सा
1: बिल्कुल
2: ट्रैक है, 36 किलोमीटर का ट्रैक
1: जी
2: है,
1: जी
2: और ऊंचे पर्वतों का ट्रैक है, ग्लेशियर्स है, और वहां हल्की सी बारिश भी ट्रैक की जो ट्रैक को फिसलन बना देता है, और इसमें कुछ नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि ये सख्त तरीन ट्रैक है, बजाय आप बालतल से जाते हैं, बालतल से इतना ट्रैक खतरनाक नहीं है जितना यहाँ से है,
1: जी
2: लेकिन इसके धार्मिक जो रूप है, जो इसका इस ट्रैक को अक्सर जो धार्मिक लोग होते हैं वो ज्यादातर पसंद करते हैं कि हम इसी रिवायती रोड से ही जाएं जहाँ से लॉर्ड शिवा गए हैं,
1: जी
2: तो उसके बाद जब रोड में बीआरओ ने इसकी जो जिम्मेदारी ली है, उसकी जो सफाई सुथराई और तामीर का काम किया है, तो अभी तक वो उन्होंने अभी ओके नहीं किया है, और मौसम, क्योंकि
1: जी
2: इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है, तब से मौसम कंटिन्यूअस हल्का बारिश, कहीं
1: बिल्कुल
2: तेज कहीं ज्यादा, तो बारिशों का सिलसिला तब से तकरीबन तकरीबन जारी रहा,
1: सही
2: और जितना भी वो ट्रैक ठीक हो रहा है उससे ज्यादा उसमें नुकसान होते हैं, और वसी तर मुफाद के लिए, क्योंकि ये ट्रैक बड़ा डेंजरस भी है, किसी भी रिस्क को उठा नहीं सकती है प्रशासन, तो
1: बिल्कुल
2: उन्होंने इस ट्रैक को बंद किया, और इस वक्त जब वह बात करें या इन दोनों की बात करें तो बिल्कुल जो हमारा नुनवन बेस कैंप है, वहां जहाँ 10,000 लोगों की रहने की गुंजाइश है, जहाँ कम से कम 600 टेंट्स लगे हुए हैं, तकरीबन 13 जहाँ लंगर हुए, और छोटे छोटे वो वहाँ स्टॉल लगे हुए हैं दुकानों के, जहाँ वस्त्र वगैरह या जो
1: जी
2: सामग्री जो होती
1: बिल्कुल
2: है मजहबी तौर पे वो वहां मिलती है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन यात्री कोई नहीं है,
1: जी
2: तीसरा
1: जी
2: जी यात्री कोई नहीं है इस वक्त, चंद एक अगर वो आते हैं पहलगाम निजी ट्रैवल करके, वहाँ कोशिश करते हैं कि हम यात्रा को चले जाएं, लेकिन प्रशासन के तौर से बिल्कुल वहाँ अभी रोक है, तो वो नहीं जा पाते हैं, लेकिन इस वक्त जो वहाँ बेसिक कैंपस है, चाहे नुनवन की बात करें, चाहे चंद ये शिशनाग की बात करें, पंचतरणी की बात करें, इन तीनों जगहों पे इस वक्त जो बड़े तीन कैंप है वहां कोई यात्रा नहीं है।
1: जी
2: ठीक
1: जी
2: है,
1: बहुत शुक्रिया एस तारिक साहब हमसे जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को ये सब जानकारियां जो है वो उन तक पहुंचाने के लिए। आपसे फिर बात होती रहेगी, तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी श्रोताओं, ये थे एस तारिक साहब जो अनंतनाग से जो है हमें मालूमात दे रहे थे। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता बुखारी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स नेवज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मौसम में खराबी के कारण यात्रा को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। मौसम में बेहतरी आते ही फिर से यात्रा की अनुमति मिलेगी। इसी बीच हम तक ये सूचना आई है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा का 28वां जत्था जो है वो अभी अभी बालतल बेस कैंप से वापस जम्मू की ओर रवाना किया गया है। ये छोटे बड़े तकरीबन 44 वाहनों पर मुश्तमिल है और इसमें कुल 1202 यात्री जो है वो शामिल हैं, जिनमें 860 जो है 67 पुरुष, 251 महिलाएं, एक बालक, 79 साधु, 4 साध्वियां शामिल हैं। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ। मैं हूँ 12:30 तक मैं आपके साथ रहूँगी, आपकी मेज़बान, आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी।

श्रोता, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। श्रोताओं, अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो ये क्षेत्र जो है हमेशा हिंदू परंपरा में सदियों से एक खास अहमियत रखता है। ये वो पाक धरती है जिसे सिर्फ कुदरती हुस्न की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी कदीम आध्यात्मिक और ज्ञानी परंपरा के लिए भी जाना जाता है। वादी को ऋषियों मुनियों और संतों की धरती कहा गया है, जहाँ सदियों से ज्ञान ध्यान और आध्यात्मिक साधना की रिवायत रही है। और कहा जाता है कि कदीम मान्यताओं में कश्मीर का जो संबत है ये ज्ञान की देवी माता सरस्वती से भी जोड़ा जाता है, जिन्हें यहाँ शारदा के नाम से जाना जाता था। और इसी वजह से जो है इस धरती को, इस भूमि को जो है शारदा पीठ भी कहा गया है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें। इसी नस्बत से कश्मीर को शारदा देश या ज्ञान और विद्या की भूमि भी कहा गया है। तो इसी तरह से अमरनाथ यात्रा ही नहीं बल्कि यहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जैसे खीर भवानी है, इसी तरह से बहुत सारे जो मंदिर हैं दूसरी जो मजहबी जगह हैं जहाँ पर जो है श्रद्धालु आते रहते हैं और अपनी जो है वहाँ पर अपनी अकीदत के फूल जो है वो निछावर करते रहते हैं। और आज जब मुल्क के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए इस पवित्र घाटी का रुख करते हैं, तो ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं रहती बल्कि कश्मीर की सदियों पुरानी जो आस्था है, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत है, उससे जुड़ने का एक मौका जो है उनको मिल जाता है। आप भी बने रहिए हमारे साथ, और आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी पड़ाव पर हैं, हमारी प्रार्थना है कि आपकी यात्रा सुखद रहे, सफल रहे, और जल्दी से जो है मौसम के मिजाज जो है वो जल्दी से बेहतर हो, ताकि आपकी जो कामना है दर्शन की वो जल्दी से पूरी हो। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 102.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपको बताते चले कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे श्रीनगर के संवाददाता, चूंकि अभी तक इनसे

0: संपर्क नहीं हो पा रहा था और इसी बीच जो है इस वक्त वो मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इमरान नायकू साहब, आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत शुक्रिया जी।
0: जी इमरान साहब, क्या सूरत हाल है, खासकर अगर मौसम की बात करें तो क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त श्रीनगर में?
1: बिल्कुल, देखिए जैसे कि अमरनाथ जी यात्रा के 36 दिन कल मुकम्मल हुए हैं, आज 37वां दिन है। आज भी मौसम काफी जम्मू रीजन के अंदर खराब है और जिसकी वजह से जम्मू से जो कश्मीर की तरफ यात्रा को आना था उसे सस्पेंड किया गया, लेकिन बहुत सारे यात्री जो है वो कश्मीर के अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स में और खासकर श्रीनगर पांथर चौक ट्रांजिट कैंप में यहाँ पर कई सारे यात्री रुके थे जो कल यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने नाइट स्टे यहाँ पे किया। और आज अमरनाथ जी यात्रा का जो जत्था है श्रीनगर के पांथर चौक ट्रांजिट कैंप से बालतल की तरफ रवाना किया गया अमरनाथ जी पवित्र गुफा के दर्शन के लिए। और इन यात्रियों में मेल फीमेल साधु साधवीज और कुछ बच्चे भी शामिल थे और लगभग 6 व्हीकल्स या गाड़ियां थी जिनमें इन अमरनाथ जी यात्रियों को यहां से रवाना किया गया। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्रा अभी तक पीसफुली जारी है और अनफॉर्चुनेटली बीच बीच में जो मौसम की वजह से यात्रा को डिस्टर्ब या सस्पेंड करना पड़ा, लेकिन जहां तक श्रीनगर में मौसम का ताल्लुक है, श्रीनगर में आज भी मौसम बिल्कुल खुशगवार है। हालांकि रात के दौरान बारिश भी शहर में हुई, लेकिन अभी मौसम सुहाना है, हल्के से बादल छाए भी हुए हैं, थोड़ी सी बूंदाबांदी सुबह हुई थी, लेकिन जैसे मौसम विभाग ने पहले ही प्रेडिक्शन दिया है कि जो जम्मू रीजन में ज्यादा बारिश होंगी या रेनफॉल होगा और कश्मीर में जो हाई रिच है वहां पे हल्की सी बारिश होने के चांसेस है और कश्मीर के जो प्लेन एरियाज हैं वहां कोई ज्यादा बारिश नहीं होगी, तो मॉडरेट रेनफॉल हो सकता है। वो मॉडरेट रेनफॉल जो है वो किसी तरह की कोई लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है और न ही शायद यात्रा पे उसका कोई असर पड़ सकता है।
0: क्या इमरान साहब, ताजा तरीन जो है भविष्यवाणी सामने आई है मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा? जी
1: जी, जैसे मैंने कहा कि जो फ्रेश में ये जो वेदर अपडेट है वो यही है कि जम्मू के अंदर कुछ जगहों पर खासकर जो हाई रिच है जम्मू के वहाँ बारिशें होंगी और अभी बारिश इसीलिए अब आज वहाँ से यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल कश्मीर में ज्यादा उसका असर नहीं होगा। हाई रिच में थोड़ी सी बारिशें हो सकती है लेकिन मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होगी। जैसे श्रीनगर की मैं पर्टिकुलरली बात कराऊंगी, यहाँ पे अभी बादल छाए हुए हैं, सुबह सुबह देर रात के दौरान तो बारिश हुई, लेकिन ओवरऑल ये अभी मौसम साजगार और इसलिए यहाँ से अमरनाथ जी यात्रियों का जो जत्था है वो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए सुबह रवाना किया गया। और मजीद यहाँ पे अभी यात्री है जो इस ट्रांजिट कैंप में मौजूद है जिनके लिए प्रशासन की तरफ से सारी सुविधाएं रखी गई है और यात्रा अगर मौसम की वजह से कहीं इस पर असर भी पड़ता है, लेकिन जो यात्री यहाँ पे हैं उनके लिए प्रशासन ने हर तरह की सुविधाएं रखी है, खाने पीने की सुविधाएं रखी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी रखी है इनके लिए, यहाँ पर जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट की जो है व्यवस्था रखी है, हर तरह की जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो यहाँ पे प्रशासन की तरफ से पहले से ही इंश्योर है और यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए राउंड क्लॉक हम देख रहे हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के लाइन डिपार्टमेंट, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, सीआरपीएफ या बाकी सिक्योरिटी जो एजेंसीज है वो काफी प्रोएक्टिव है और हम देख रहे हैं कि सारी यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है और सिर्फ ये मौसम पर ही इनसार करता है कि मौसम बेहतर हो और यात्रा स्मूथली जारी रहे। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि अभी तक इस साल 5 लाख तकरीबन अमरनाथ जी यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया है और विदाउट एनी जो है यात्रियों को किसी तरह की तकलीफ या मुश्किल होते हुए, अलबत्ता जो मौसम की वजह से थोड़ी सी इसमें मुश्किलात पेश आई है, यहाँ ये कोशिश की जा रही है कि उसका ज्यादा असर ना हो और मौसम बेहतर हो तो यात्रा भी स्मूथली जारी रहेगी। अलबत्ता जो यात्री यहाँ पे रुके हैं उनके लिए सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से पहले से।
0: जी इमरान साहब, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, चूंकि जहाँ जब तक मौसम खराब रहता है, क्या यात्रियों को अनुमति मिलती है कि वो दूसरी जो जगह है जैसे खीर भवानी है या शंकराचार्य वगैरह, उनको अनुमति मिलती है कि वो तब तक उन जगहों का जो है दौरा कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं?
1: देखिए जैसे मैं कंटिन्यूअसली अपडेट कर रहा हूँ कि अमरनाथ जी यात्रियों के लिए प्रशासन की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एसओपी सेट है
0: बिल्कुल।
1: और उस एसओपी के तहत ही अमरनाथ जी यात्री कहीं पे भी जा सकते हैं, जहां उनको किसी मंदिर में

0: पूजा के लिए जाना हो या किसी मार्केट में जाना हो या कहीं और पे जाना हो, तो उस एसओपी के तहत ही उनको, या जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है या जो एडवाइजरीज है उसी के तहत उनको जो है विजिट करना होता है पहले से एडमिनिस्ट्रेशन। और हम देख रहे हैं कि यात्री उसका बिल्कुल उसको फॉलो भी कर रहे हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कहीं इस तरीके की कोई ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यात्रियों से मुतल्लिक कोई शिकायत अभी आई है और ना ही यात्रियों की शिकायत एडमिनिस्ट्रेशन को मिली है।
1: जी, ये बहुत ही खुशायन बात है हमारे लिए भी कि हमारे जो मेहमान हैं वो हमसे यहाँ से खुश होके जाते हैं। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो चूंकि श्रावण का महीना है तो किस तरह से जो है इस मौसम को यात्री एंजॉय कर रहे हैं?
0: देखिए, कश्मीर की खूबसूरती एक अलग ही मकाम रखती है। यहाँ की ब्यूटी, खासकर नेचुरल ब्यूटी, तो पूरे ना सिर्फ देश में दुनिया में मशहूर है। और यहाँ बारिशें होना और वो भी इस मौसम में, जाहिर सी बात है ये एक अलग ही सुकून, ये अलग ही एक एक्सपीरियंस किसी भी यात्री को, किसी भी टूरिस्ट को यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और इसलिए इस मौसम में, श्रावण में यहाँ पे बारिशें होना, तो ये यात्रियों का भी ये कहना है कि वो इसी चीज से खुश है कि बारिशें हो, गर्मी भी हो और बारिशें भी हो, तो इसका एक अलग ही लुत्फ है, इसका एक अलग ही मजा है। लेकिन सिर्फ हम ये दुआ करते हैं कि इतनी बारिश भी ना हो, खासकर हाई रीचेस में, कि जहाँ फ्लैश फ्लड या कोई और डिजास्टर हो जाए। लेकिन और आगे जो श्रावण के महीने में अक्सर इस तरीके की बारिशें होती है, मानसून की बारिशें होती है, तो इसमें यात्री भी, टूरिस्ट भी और लोकल्स भी जानते हैं कि इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि फ्लैश फ्लड्स अब एक आम या नॉर्मल बन गया है, तो उसको देखते हुए अब गवर्नमेंट भी उस पर काफी संजीदा है कि फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट का होना तो ये कितना एक कंसर्न है। लेकिन ये सारा कुदरत के हाथ में है और उम्मीद ये की जाती है कि सब कुछ बेहतर हो और हर एक की जान माल हिफाजत में हो।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारी भी यही प्रार्थना है कि जो मौसम है इसकी कृपा जो है वो भी हम पे बनी रहे और हमारे जो यात्री हैं उनमें कहीं भी उनको किसी भी जो है कठिनाई का सामना ना करने पड़े। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। श्रोताओं, ये थे इमरान नायकू साहब जो श्रीनगर से हमें बराह रास्त जो है मालूमात और जानकारी जो है यात्रा के हवाले से दे रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से

समर्पित है और यहाँ से श्रीनगर शहर और डल झील का दिलकश नज़ारा भी दिखाई देता है। मान्यता है कि इस पहाड़ी का ताल्लुक आदि शंकर आचार्य से रहा है। कहा जाता है कि उन्होंने कश्मीर का दौरा किया और यहाँ आध्यात्मिक चिंतन और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया। इसी वजह से यह स्थान सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि ज्ञान ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन की एक अहम निशानी भी समझा जाता है। श्री अमरनाथ यात्रा के सौंदर्य में भी शंकर आचार्य मंदिर की अपनी खास अहमियत है। छड़ी मुबारक की यात्रा के दौरान श्री शंकर आचार्य मंदिर में पूजा और दर्शन की परंपरा भी आस्था से जुड़ी हुई है। आगे भी हम बात करते रहेंगे इन पवित्र स्थानों के हवाले से। इस बीच जो है हम तक दर्शन रिपोर्ट भी हमें प्राप्त हुआ है। कुछ ही देर बाद जो है आपको जो है ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट पहुंचाते हैं। तब तक आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मौसम में खराबी के कारण जो है यात्रा को फिलहाल आज के लिए निलंबित कर दिया गया है। श्रोताओं, कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, इसलिए थोड़ा सा धीरज रखिए, सब्र रखिए, शायद इसी इंतजार में कोई बड़ी बेहतरी छुपी हो, शायद बाबा बर्फानी के दर्शन का सबसे खूबसूरत लम्हा आपका मुंतजर हो। यकीन रखिए, हर पल का इंतजार इस पवित्र दर्शन को और भी यादगार बना देता है। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में, और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि हमें जो है ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार जो है आज अभी तक 1132 यात्री जो है वो पवित्र गुफा के दर्शन मुकम्मल कर चुके हैं, जिनमें 840 पुरुष, 152 महिलाएं, 17 बालक, 7 साधु और 116 जो है सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, अगर आपको यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता दरकार हो तो नजदीकी सेवा केंद्र, पुलिस या श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क करें, या फिर हेल्पलाइन नंबर 9596990954 पर राबिता करें। आप हमारा टोल फ्री नंबर भी डायल कर सकते हैं। श्रीनगर का जो टोल फ्री नंबर है वो है 8180087199। एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ कि 8800807199, और जम्मू का जो हमारा टोल फ्री नंबर है वो है 1800187198। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम में खराबी के कारण यात्रा को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। मौसम में बेहतरी आते ही यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स नेवज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, धीरज ही साधना की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए अगर जी यात्रा वक्ती तौर पर रुकी हुई है, लेकिन हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम संयम बनाए रखें और हर सिचुएशन में जो है प्रशासन और सिक्योरिटी एजेंसियों के निर्देशों पर अमल करें, क्योंकि दर्शन की उत्साह अपनी जगह, लेकिन यात्रियों की जो सुरक्षा है वो भी बहुत ही अहम है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपना ख्याल रखें, अपने प्रियजनों का भी ख्याल रखें और बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय मौसम की स्थिति को देखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा को स्थायी रूप से जो है निलंबित किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सलामती को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। श्रोताओं, यही परिस्थिति हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण का जो संरक्षण है कितना आवश्यक है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। जब हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन भी सुरक्षित और सुखद रहता है। इसलिए अक्सर हम कहते रहते हैं कि प्रकृति का ख्याल रखें, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम अपने प्रियजनों का और अपना ख्याल रखते हैं, तभी जाकर जो है हमारा जीवन जो है वो भी सफल हो सकता है। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में। कुछ ही समय में समाचार रिले होंगे। समाचार के लिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: समीन आइए समाचार सुनते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड।

0: आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी। लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2रा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेबेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi is addressing the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi. Earlier, Prime Minister Modi conferred degrees on 587 PhD scholars during the ceremony. We now go live to the Prime Minister's address.
0: वो अकेले नहीं आती है, मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। इस बीच हम तक जो है ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट पहुंच चुका है। दर्शन रिपोर्ट के अनुसार आज जो है अभी तक कुल 1794 यात्रियों ने जो है पवित्र गुफा के दर्शन मुकम्मल किए हैं, जिनमें 1365 पुरुष, 257 महिलाएं, 19 बालक, 12 साधु और 141 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, यात्रा सिर्फ एक जिस्मानी सफर नहीं बल्कि आत्मा का सफर है। ये हमें सिखाती है कि जीवन के मार्ग चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, अगर दिल में यकीन हो और कदमों में हौसला हो तो कोई मंजिल दूर नहीं, कोई मंजिल कठिन नहीं। इसी संदेश के साथ अपनी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी को इजाजत दीजिए। अब से बराबर 6 बजे तक आपके साथ रहेगी हमारी उद्घोषक सबरीना जी। सबरीना महराज को हम स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में और मुझे दीजिए अनुमति

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। अब से लेकर शाम के 6 बजे तक श्रोताओं, मैं सबरीना महराज आपके साथ जुड़ी रहूंगी और यात्रा से मुतल्लिक अपडेट्स और दीगर जानकारी पहुंचाती रहूंगी। हमारे साथ तब तक बने रहिएगा और इस विशेष प्रसारण में हम आपको यात्रा के मुख्तलिफ पड़ावों से ताज़ा सूचनाएं, मौसम की अपडेट्स, यात्रियों के अनुभव और हमारे संवाददाताओं की विशेष रिपोर्ट्स भी सुनवाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति सॉन्ग्स।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज़, जहाँ से आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून

0: सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजीलॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए IED विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांच मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चारिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that students graduating today are not merely completing their education, but are beginning a new chapter in their lives. He was addressing the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. Mr. Modi urged the graduating students to live the moment to the fullest, as they would cherish and miss the memories of their campus life in the years to come. The Prime Minister congratulated the graduating students and wished them success as they embark on a new journey.
2: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
1: The Jharkhand government today held talks with protesting students and job aspirants over alleged irregularities in examinations conducted by the JPSC and GSSC. The meeting began at the state guest house in Ranchi. An 8-member delegation representing students and job aspirants is holding discussions with government officials. The talks come after protests in the state capital over the past 2 weeks against the alleged irregularities in the exams. The first formal meeting between the government and the students' delegation was held last evening. Pay Women's Council of India PCI has

जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएंगे, खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के बाइस जम्मू से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है और रामबन जिले और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और यात्रा के दूसरे रास्तों पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसलिए एहतियात के तौर पर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों के किसी नए काफिले को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है और अथॉरिटीज फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए हैं और मौसम व सड़क की स्थिति का जायजा लेने के बाद ही यात्रा को दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा और हम यही दुआ करते हैं कि वो यात्रा भी जल्दी से बहाल हो जाए और आपकी यात्रा सफल हो जाए और सुखद बने और सुरक्षित बने। हमारे साथ बने रहिएगा आज के इस नशरियात में और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

0: जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, अब आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज, जहाँ से आप समाचार सुनेंगे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे खुद कफालत वाले शोबे सामने आ रहे हैं जो विकसित भारत की एक मजबूत बुनियाद बनेंगे। उन्होंने IIT के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों पर एहतजाज करने वाले तलबा के साथ दूसरे दौर की गुफ्तगू की है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज राजस्थान और उड़ीसा में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से बालतल के लिए अमरनाथ जी की यात्रा मुअत्तल कर दी गई है और अमेरिका में 20 साल तक की उम्र की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में आशीष यादव ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के तलबा पर जोर दिया है कि वो अपने फैसलों में मुल्क के मफाद को मरकजी हैसियत दें। उन्होंने तलबा से कहा है कि वो खुद से ये पूछें कि उनकी सरगर्मियों से मुल्क को किस तरह फ़ायदा पहुंच सकता है और किस तरह ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। जनाब मोदी ने IIT दिल्ली के 97वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हर नस्ल को अपने ज़माने में मखसूस चैलेंजों का सामना करना पड़ता है और वो अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं।
2: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
1: जनाब मोदी ने कहा है कि इस इदारे से ग्रेजुएट करने वाले तलबा ने जो काम किए हैं 30-35 बरसों में, उनके असरात विकसित भारत के सफर पर नुमाया तौर पर असरअंदाज होंगे।

0: वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर कर सामने आ रहे हैं जहां नौजवानों को नित नए मौके मयसर होंगे। उन्होंने इस सिलसिले में सेमी कंडक्टर, खला और ड्रोन्स का जिक्र किया और यह भी कहा कि भारत इन सभी शोबों में खुद किफालत के हुसूल के लिए काम कर रहा है।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: जनाब मोदी ने तलबा से कहा है कि उन्हें तनख्वाह, मुलाजमत या शोबे की बुनियाद पर जहां वो काम करते हैं दूसरों से मुआवजना करने से गुरेज करना चाहिए। वजीर आजम ने कहा है कि जिंदगी दर्जाबंदी का नाम नहीं है और न ही इसका मकसद दूसरों से मुकाबला करना है, बल्कि ये मुकाबला खुद ही से करना है। जनाब मोदी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो उन्हें हर दिन गुज़िश्ता कल से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। झारखंड हुकूमत ने जेपीएससी और जेएसएससी की जानिब से मुनाकिद कराए गए इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों पर एहतजाज कर रहे तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद से आज बातचीत की। यह मुलाकात रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में शुरू हुई। तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद की नुमाइंदगी करने वाला 8 रुकनी वफ्द सरकारी अफसरान से बातचीत कर रहा है। इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के मामले पर रियासती राजधानी में गुज़िश्ता हफ्तों से जारी मुजाहिरों के बाद ये बातचीत हो रही है। तलबा के वफ्द और हुकूमत के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात कल शाम मुनाकिद हुई थी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के साथ हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा चुराह असेंबली हलके में तीसा पुलिस स्टेशन हुदूद में चालुंज मोड़ के करीब मीरागढ़ में हुआ। हलाक होने वाले 7 अफराद की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इमरजेंसी कार्रवाइयों से मुतालिक रियासती सेंटर के मुताबिक यह हादसा आज सुबह 7:15 बजे के करीब पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये प्राइवेट बस बीरागढ़ से चंबा जा रही थी जब ये चालुन मोड़ के करीब सड़क से नीचे उतर गई और नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने गमजदा कुंबों के साथ ताजियत का इजहार किया। वजीर आजम ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने सरहद पार की दहशतगर्दी से मुतालिक साजिश में मुलव्विस 2 मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। ये दोनों मुलजिम भारत पाकिस्तान सरहद से आईईडी, आतिशी हथियार और हेरोइन मुबैना तौर पर स्मगलिंग करने में मुलव्विस थे। हथियारों वगैरह का पंजाब और नई दिल्ली में मंसूबाबंद हमलों में इस्तेमाल किया जाना था। ये फर्द जुर्म कल मोहाली में कौमी जांच एजेंसी एनआईए की खसूसी अदालत में दायर की गई। मुल्जमान के नाम शुभम कुमार और जसवीर चौधरी बताए गए हैं। शुभम कुमार गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि जसवीर फरार बताया जाता है। भारतीय महकमे मौसमियात ने राजस्थान और उड़ीसा में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और गरज चमक का इम्कान जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू से बालतल के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा आज के दिन मुअत्तल कर दी गई है। खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई मकामात पर सड़कों की हालत की वजह से यात्रा मुअत्तल की गई है। ताहम बालतल से पवित्र गुफा की जानिब यात्रा जारी रहेगी। सुबह से 1200 से ज्यादा अकीदतमंद दर्शन कर चुके हैं। दर्शन कर चुके यात्रियों को बालतल से जम्मू जाने की इजाजत दी गई है। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मैट्रिक टन खेप पहली मरतबा बिहार से ऑस्ट्रेलिया बरामद की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि यह खेप सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदी गई जिससे उन किसानों को बाजार की कीमत के मुकाबले 18% ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। भारतीय रेलवेज की जानिब से केरलम के ओनम त्योहार के लिए ऐलान करदा खसूसी ट्रेन खिदमात की तादाद बढ़कर 112 हो गई।

0: है। खुसूसी खिदमात ज्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए चलाई जा रही हैं। भारत ने अमेरिका के यूजेन में जारी एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे रोज आशीष यादव के मर्दों के जेवेलियन थ्रो में चांदी का तमगा जीतने के साथ अपने तमगों का खाता खोला। 19 साल खिलाड़ी ने अपनी तीसरी कोशिश में 74.09 मीटर की अपनी बेहतरीन थ्रो की और दूसरे मकाम पर रहे। आशीष वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने 2016 में पोलैंड में मुनाकिदा चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता था, जहां उन्होंने 86.48 मीटर के थ्रो के साथ अब तक कायम आलमी जूनियर रिकॉर्ड बनाया था। जनूबी अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेमंस ने 80.50 मीटर के थ्रो के साथ सोने का तमगा जीता। जनूबी कोरिया के आसान में जारी कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चहलिहर खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन भारतीय खिलाड़ी रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से शिकस्त दी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए आला दर्जाबंदी की हामिल आलमी नंबर 22 जापान की हीना अकेची को 3 गेम्स के सनसनीखेज मुकाबले में हरा दिया था। खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में कल अश्मिता का मुकाबला चीन की क्यू हान से होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे खुद किफालत वाले शोबे सामने आ रहे हैं, जो विकसित भारत की एक मजबूत बुनियाद बनेंगे। उन्होंने IIT के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों पर एहतजाज करने वाले तलबा के साथ दूसरे दौर की गुफ्तगू की है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज राजस्थान और उड़ीसा में तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से बालतल के लिए अमरनाथ जी की यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interest at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations. 7 people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Orissa today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under 20 Championships in United States. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Mr. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
2: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।

0: dispute over the construction project. A federal appeals court has blocked work on the proposed White House ballroom. Trump has described the court ruling as a national security threat and a national disgrace, and said his administration would challenge the decision before the U.S. Supreme Court. At least three people, including a child, have been killed in overnight Russian missile strikes near the Ukrainian capital Kyiv. The attacks hit areas east of Kyiv in the early hours today. Regional Military Administration Chief Temur Kachenko said three people were also injured in the ballistic missile strikes. India opened its medal account on the third day of the World Athletics Under-20 Championships in Eugene, USA, with Ashish Yadav winning silver in the men's javelin throw. The 19-year-old produced his best effort of 74.09 meters in his third attempt to finish second. Ashish became only the second Indian after Neeraj Chopra to win a silver in the event at the World Athletics Under-20 Championships. South Africa's Jan Hendrik Hemans won the gold with a throw of 80.5 meters. Indian shuttler Ashmita Chaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 badminton tournament in Asan, South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. Ashmita will face China's Qiu Han in the women's singles final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interests at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and GSSC examinations. Seven people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under-20 Championships in United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण

0: के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक

0: केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र के शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
1: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट। रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे।

0: से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतर की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: जी श्रोताओं, ये आप समाचार दिल्ली से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती की वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, आपको बताएंगे कि 2 बजे की ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट जो है हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार दिन के 2 बजे तक कुल 3,053 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 2,323 और जिनमें महिलाओं की संख्या 462, बालकों की संख्या 21, साधु 18, साध्वी 3, ट्रांसजेंडर 2 और सुरक्षा कर्मियों की संख्या 224 है। तो ये अभी तक 2 बजे की दर्शन रिपोर्ट आई है जो मैंने आप तक पहुंचाई है लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार। और अभी तक 2 बजे के जो ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट हम तक पहुंचे हैं, 2 बजे तक तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं इन्होंने पवित्र गुफा के दर्शन जो हैं प्राप्त कर लिए हैं। तकरीबन 3,053 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

0: जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। तो श्रोताओं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जी, जो हमें जम्मू से अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मेहराब जी। जावेद मेहराब जी, बताइएगा जम्मू के हवाले से, यात्रियों के हवाले से क्या कुछ अपडेट है?
1: जी देखिए, मौसम की भविष्यवाणी, मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी उसके मुताबिक ही यहाँ मौसम बना हुआ है। सुबह से बादल छाए हुए थे, इस बीच रात को भी कहीं बारिशें हुई और ये मैदानों की मैं बात कर रहा हूँ, पहाड़ों में कह रहे हैं कि बारिशें, जानकारी जो मिल रही है वो अभी तक ये है कि हल्की बारिशें लगातार जारी है। लेकिन इस बीच आज जो है ये जो अमरनाथ यात्रा का जो सिलसिला है आज स्थगित रहा। आज के दिन अनुमति नहीं दी गई जम्मू से घाटी की और श्रद्धालुओं को, तो इसलिए आज का तो स्थगित रहा। लेकिन इसके बावजूद ये जो कदम है, ये जो फैसला है, ये श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ही लिया गया फैसला है, क्योंकि कल से ऑरेंज अलर्ट दिखा रहा है मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उस पे ऑरेंज अलर्ट है। सख्त से सख्त बारिशें होने का इम्कान भी है और इस बीच जो पहाड़ों में बारिशें होती हैं वो परिस्थितियों को कई बार बदल भी देती है। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग की खबरें आ रही हैं वो अभी राष्ट्रीय राजमार्ग अभी खुला है और घाटी से जो जम्मू की तरफ आ रहे हैं श्रद्धालु हैं वो जम्मू की ओर आस्ता आस्ता पहुंच रहे हैं और उनका काफिला लगातार जारी है जम्मू की तरफ। लेकिन जम्मू से आज यात्रा को स्थगित रखना पड़ा और हालांकि अब तीर्थ यात्रा का जो सिलसिला है वो कुछ हद तक जरूर कम हुआ है, लेकिन तीर्थ यात्रियों का आना जम्मू में जारी है। अब जबकि सिर्फ 3 सप्ताह का ही वक्त रह गया है, लगभग 21 दिन के बराबर का वक्त है अभी तीर्थ यात्रा का। 28 को ये यात्रा अपने संपन्न हो जाएगी, लेकिन अभी 3 सप्ताह का वक्त है जहां प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी की ओर रवाना किया जाए। वहीं श्रद्धालुओं की भी आस्था जुड़ी है बाबा बर्फानी के द्वार से और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही मौसम बेहतर होगा, आसमान साफ होगा और उन्हें इजाजत दी जाएगी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। चूंकि ये जो आज स्थगित रही यात्रा, ये सिर्फ जम्मू संभाग में ही बारिशें नहीं है, घाटी में भी खबरें हैं कि बारिशें हैं और पहाड़ी श्रृंखलाओं का ये जो सफर है ये बारिशों के दौरान बहुत सख्त भी हो जाता है। इसलिए प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि यहाँ से इस आज के दिन यात्रा को नहीं आने की अनुमति दी, तो इस वजह से श्रद्धालुओं में कुछ हद तक थोड़ा मायूस जरूर है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें इजाजत दी जाएगी। हालांकि इस आखिरी पड़ाव तक अभी तक लगभग 4,76,000 श्रद्धालु जो है अभी तक बाबा बर्फानी के द्वार तक पहुंचकर दर्शन कर वापस भी अपने घरों को लौट चुके हैं, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा था और बहुत बड़ा चैलेंज था इस पूरे सफर में जो ये रहा बाबा अमरनाथ

जी की यात्रा का, क्योंकि लगभग 29 वां जत्था कल गया यहाँ जम्मू के भगवती नगर निवास स्थान से, और आज 30वां जत्था जाना था, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी जो यात्रा है वो स्थगित है, और तीर्थयात्री जो है, श्रद्धालु जो है, वो यहाँ के निवास स्थान भगवती नगर में बने हुए हैं। यहाँ

0: मंदिर है उन पे
1: जी
0: भी जाने की, तो वहां भी वो हिस्सा लेते हैं स्थानीय लोगों के साथ पूजा अर्चनाओं में। तो एक बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है, लेकिन बारिशें हैं और बारिशों की वजह से फिलहाल जो ये यात्रा है अभी फिलहाल स्थगित रखी गई है, लेकिन जल्द ही ये यात्रा उम्मीद है कि फिर से दोबारा शुरू होगी और जो बाबा बर्फानी की गुफा में हाजिरी देने के लिए तैयार श्रद्धालु हैं उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। लगातार इस यात्रा में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, साधु साध्वी शामिल हो रहे हैं, और श्रोताओं की जानकारी के मुताबिक हम बताएं कि शुक्रवार को जैसा कि 29वां जत्था यहाँ बाबा बर्फानी की तरफ रवाना हुआ था,
1: जी
0: हालांकि अब 9 अगस्त से लेकर कल से 11 अगस्त तक मौसम विभाग ने जम्मू के पहाड़ी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और भविष्यवाणियों के मुताबिक सख्त बारिश की चेतावनी है। लेकिन हालांकि कल भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के मद्देनजर सड़क को की निगरानी होनी चाहिए और समय रहते ही मशीनरी और कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर काम पे लगा के राष्ट्रीय राजमार्ग को फिर से ट्रैफिक की आवाजाही के लिए यकीनी बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि ये पहाड़ों का सफर है, रात की बारिश कई बार तेज होती है, भूस्खलन कई बार सख्त होते हैं, और उस बीच श्रद्धालुओं को इन बारिशों के दौरान इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकालना सुरक्षा कवच के साथ बहुत मुश्किल भी होता है। ये कोई इतना आसान चैलेंज नहीं है, बहुत मुश्किल चैलेंज भी है, लेकिन अभी तक का जो चैलेंज जितनी भी एजेंसियों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए या प्रशासन के लिए या उसके अलावा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो मैनेजमेंट रही है, वो अभी तक एक बहुत बड़ी कामयाबी के साथ लाखों श्रद्धालुओं को दर्शन करवा चुकी है और पूरी सही सलामत और बेहतर विश्वास के साथ, जोश खरोश के साथ वापस वो अपने घरों की तरफ भी लौटे हैं, और ये लगातार जारी है। यहाँ के जो रेलवे स्टेशन और बस के माध्यम से जो श्रद्धालु अपने घरों को लौट रहे हैं, वो उसी विश्वास का की बात कर रहे हैं कि प्रशासन ने जिस तरह से लगातार इस यात्रा को चलाया है
1: बिल्कुल
0: और अपने आखिरी पड़ाव में जो ये यात्रा अभी तक पहुंची है बहुत कामयाबी के साथ पहुंची है, जिसमें तमाम संस्थानों का एक बहुत बड़ा रोल है, निजी संस्थाओं का, स्थानीय लोगों का, और उसके अलावा प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां, समझ लें आपकी जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी उसका ये पहली प्राथमिकता जो है वो श्रद्धालुओं की, जो मेहमान यहाँ पहुंचते हैं उन्हें
1: बिल्कुल
0: पूरी उस मेहमान नवाजी से नवाजा जाए जो यहाँ की रीत रही है, यहाँ का कल्चर रहा है। और ये न सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर में भी इसी तरह का माहौल था, वहां भी लोगों ने अपने रास्ते छोड़कर श्रद्धालुओं को सुरक्षा को यकीनी बनाया है, और अभी तक की ये यात्रा है सुखद और सुविधाओं के साथ बराबर चल रही है, और श्रद्धालु भी उसी जोश खरोश के साथ बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ जाने की इच्छा रखते हैं, और ये इच्छा जल्द ही फिर से पूर्ण होगी, रास्ते फिर से ठीक होंगे और मौसम एक बार फिर खुलने के साथ ही यात्रा फिर से शुरू होगी, ऐसा हम सबकी कामना भी है और हम सबकी
1: बिल्कुल
0: उम्मीद भी है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: जी, जम्मू से आपने एक अहम अपडेट हम तक पहुंचाया है, हमारे यात्री दोस्तों के लिए एक अहम अपडेट हम तक पहुंचाया है, बहुत धन्यवाद आपका जावेद मेहराब जी।
0: बहुत शुक्रिया।
1: जी तो श्रोता, ये थे हमारे साथ जावेद मेहराब जो कि जम्मू से हमारे संवाददाता हैं, जिन्होंने श्रद्धालुओं के हवाले से अहम अपडेट हम तक पहुंचाई है। हम जानते हैं कि आज जम्मू से जो अमरनाथ जी यात्रा है उसको फिलहाल सस्पेंड किया गया है, लेकिन बालतल रूट से जाने की फिलहाल जो हमारे यात्री दोस्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनको वहाँ से जाने की इजाज़त है और बदस्तूर वहाँ पर जारी है, और इस हवाले से हम मज़ीद अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, और हम भी यही कामना करते हैं कि हमारी ये जो यात्रा है ये सफल रहे, सुखद रहे, और हमेशा जो है वो सुखद रहे, कामयाब रहे, हमारी यही प्रार्थना है। आप तब तक हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

0: जी श्रोताओं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मोहम्मद तस्कीन, जो कि बानिहाल से हमारे संवाददाता हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अपडेट्स हैं यात्रा के हवाले से इनके पास। जी
1: जी
0: मोहम्मद तस्कीन
1: शुक्रिया।
0: जी,
1: जैसा कि आपको मालूम है कि आज जम्मू से जो श्री अमरनाथ यात्रा का काफला आना था, उसे आज आने की इजाजत नहीं दी गई मौसमी खराबी की वजह से, क्योंकि गुज़श्ता आधी रात से ही बारिशें हो रही है रामबाद, उधमपुर, बानहाल के इस पूरे क्षेत्र में, तो जिसकी वजह से आज श्री अमरनाथ यात्रा को जम्मू से इजाजत नहीं दी गई। अलबत्ता जो दर्शन के बाद जो वापस श्री अमरनाथ यात्री जा रहे थे, तो उनकी जो गाड़ियां थी, करीबन 44 गाड़ियां थी, जिनमें करीबन 1200 के करीब श्री अमरनाथ यात्री थे, जो दर्शन के बाद जो वापस आए थे, उन्हें आने की इजाजत दी गई। और वो करीबन 12:30 बजे यहाँ बानहाल से जो लंच वगैरह करके जम्मू की तरफ रवाना किए गए हैं। तो अभी ये ट्रैफिक जो है जम्मू की तरफ बढ़ रहा है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हुआ चाहता है और वहां से ये जम्मू की तरफ रवाना होंगे। इस दौरान जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, सुबह से ही जो आधी रात से बारिशें शुरू हुई, आज सुबह से मुसलसल हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है रामबन, बानहाल और उधमपुर के पूरे क्षेत्र में, जिसकी वजह से जो हाईवे तो अभी ठीक है, जिस पर ट्रैफिक अभी गुजर रहा है, ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ा। जो मामूल का मुसाफिर ट्रैफिक है और ट्रक्स को आज जम्मू से आने की इजाजत थी, जबकि जो मुसाफिर गाड़ियां हैं, अलमवीज हैं, उन्हें दोनों तरफ से चलने की इजाजत थी, और ये ट्रैफिक अभी अपने अपने मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल पूरे इलाके में बारिशें हो रही है, मुसलसल मौसलाधार बारिशें सुबह से जारी है। तो इस अलबत्ता हाईवे जो है अभी किसी भी जगह से हाईवे के बंद होने की कोई खबर नहीं है। बारिशों की वजह से जो ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ा है। अलबत्ता उधमपुर के इलाके में करीबन 12 बजे हल्की हल्की लैंडस्लाइड से एक दो जगह पर आई हुई थी, अलबत्ता उससे जो शारा का ट्रैफिक था उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। फिलहाल जो कश्मीर से ट्रैफिक जो मतलब जो श्री अमरनाथ यात्री थे जो दर्शन करके वापस आ रहे थे, उनका ट्रैफिक जो है अभी रामबन डिस्ट्रिक्ट से होकर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि ये आसानी के साथ बगैर किसी खलल के जम्मू की तरफ मतलब रवाना कर दिया जाएगा, क्योंकि उधमपुर सेक्टर में कई जगहों पर हाईवे की जो हालत है खराब है। अलबत्ता फिलहाल जो है ट्रैफिक गुजर रहा है और बगैर किसी खलल के गुजर रहा है।
0: जी तस्कीन साहब, हमें बताइएगा, क्योंकि बालतल रूट से फिलहाल अमरनाथ जी यात्रा जारी है, क्या कुछ इंतजाम जो हैं आला हुकाम की जानिब से की गई है या सुरक्षा सुरक्षा कर्मी की तरफ से?
1: बहुत आला इंतजाम है, पहले से ही इंतजाम किए गए हैं। जब 2 जुलाई को यात्रा शुरू की गई थी, तो उस दिन से ही जो इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पूरी तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम थे पूरे यात्रा के लिए किए गए थे। इसमें जो रामबन का और बानहाल का, जो जम्मू डिवीजन की जब बात करेंगे, तो 3 जगहों पर इनके मेन स्टेशन थे, जिसमें जो सबसे पहला जो भगवती नगर जम्मू का स्टेशन आता है, उसके बाद चंद्रकूट का यात्रा निवास आता है, उसके बाद बानहाल का स्टेशन आता है। तो इन 3 जगहों पर जो इंतजाम है वो आला किस्म के हैं। न सिर्फ सिक्योरिटी के इंतजाम है, बल्कि खाने पीने के, रहने के पूरे इंतजाम है यात्रियों के लिए, और उन्हें खूब इस्तेमाल भी किया गया इस पूरी यात्रा के दौरान। और अगर कहेंगे तो किसी किस्म का कोई शिकायत भी मौसूल नहीं हुई इनकी यात्रियों की तरफ से, जिसमें यह कहा जाए कि कहीं

0: चूक हुई हो इंतजामिया की तरफ से, इंतजाम में पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड इंतजाम है, पूरा जो है ए टू जेड इंतजाम रखे गए, जिसमें खाने पीने का हो, रहने का हो, और बाकी जो जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पानी बिजली और जो ये जो सेहत और सफाई का इंतजाम है, और उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स जो इंतजाम मतलब हॉस्पिटल्स का डॉक्टर्स का राउंड द क्लॉक रखे गए थे रामबन में भी और बनहाल में भी, तो इस वजह से जो इंतजाम थे आला किस्म के थे, पहले से ही इंतजाम थे और वो सिलसिला अभी बरकरार है। और फिलहाल जो यात्रा आज दिन के लिए मुअत्तल की गई है, तो अब मजीद जो महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है, एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन एक हफ्ते तक बारिशों का हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान है, बीच बीच में ये सिलसिला जारी रहेगा आइंदा भी, और खासकर इसके लिए जम्मू डिवीजन को कहा गया है कि इसमें बारिशों का जो ज्यादा जो असर रहेगा, जिसमें ये चनाब वैली का इलाका है जिसमें हाईवे का बेशतर हिस्सा भी आता है रामबन डिस्ट्रिक्ट से, जो अगर कहेंगे हम पत्नीटॉप या नाशरी से लेकर जवाहर टनल तक, तो इस एरिया में भी बारिशों की पेशन गोई की गई है। फिलहाल जो मजमुई तौर पर जो यात्रा और जो बाकी ट्रैफिक है मतलब बगैर किसी खलल के जो जारी हुआ, क्योंकि आज जम्मू से ट्रैफिक नहीं छोड़ा गया था यात्रा का, अलबत्ता जो कश्मीर का ट्रैफिक है, जो कश्मीर से जो श्री अमरनाथ यात्रा की गुफा के बाद जो वापस दर्शन के बाद ट्रैफिक आ रहा था, ये अभी जम्मू की तरफ बढ़ रहा है, और उम्मीद है कि करीबन 4:30-5 बजे तक ये जम्मू पहुंच जाएंगे।
1: जी बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद तस्कीन साहब, यात्रियों के हवाले से अहम अपडेट देने के लिए शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ बनिहाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन, जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों के हवाले से अहम अपडेट हम तक पहुंचाई हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए भक्ति संगीत।

जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती की वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताएंगे कि इमरजेंसी नंबर्स और आईडी प्रूफ साथ रखें, जो भी हमारे यात्री दोस्त हैं। मोबाइल चार्ज रखें और अपने परिवार को अपनी यात्रा की जानकारी जरूर देते रहें और इसी के साथ भक्ति के साथ अनुशासन भी रखें। लाइन में चले, भीड़ ना बनाएं और अन्य यात्री जो हैं उनका सम्मान करें, क्योंकि बाबा बर्फानी सभी यात्रियों की ये जो यात्रा है वो मंगलमयी और सुरक्षित बनाए, हमारी भी यही प्रार्थना है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

0: जी श्रोताओं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एस तारिक साहब, जो कि हमारे संवाददाता अनंतनाग से हैं। चले इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अपडेट्स हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से। जी तारिक साहब, बताइएगा क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास।
1: बहुत शुक्रिया सबरीनाथ जी।
0: जी
1: अभी श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहलगाम मार्ग पर आज मौसम मजमूई तौर पे अब्र आलूद बना हुआ है। उठते बढ़ते से हल्की बारिशों का सिलसिला भी जारी है। दोपहर के अवकात में रुक रुक कर हल्की बारिश की पेशगोई की गई थी, जो फिलहाल दुरुस्त साबित हो रही है। और इसके साथ ही अनंतनाग के लगभग पूरे क्षेत्र में बारिशें हो रही है हल्की सी। पहलगाम में इस समय दर्ज हरारत 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि यात्रा के बाराई इलाकों में दर्ज हरारत नस्बतन कम

0: है, जनवरी से 5 तारीख तक यात्रा मार्ग पर दर्ज हरारत 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोपहर के औकात में इनकी इन इलाकों में भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिशों का दौर जारी है। इधर श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के नजदीक दर्ज हरारत तकरीबन 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि यहाँ नमी की मात्र 98% रिकॉर्ड की गई है। यात्रियों को यात्रा के बालाई मार्ग पर मौसम में अचानक होने वाली तब्दीली के पेश नजर खास एहतियात बरतने और इंतजाम की जानिब से जारी की गई हदायत पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया गया है। इधर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला है, तमाम इलाके में जारी बारिशों और मौसम की मौजूदगी मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से भारतल यात्रा मार्ग के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा को आर्जी तौर पे मुलतवी रखा गया है, जबकि पहलगाम मार्ग से श्री अमरनाथ जी यात्रा भी बदस्तूर आर्जी तौर पे मुलतवी है। तमाम श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा में दर्शन का सिलसिला अभी जारी है। अब तक 3,000 से जायद शिव भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन का लाभ हासिल किया है। दर्शन के बाद वापस लौटने वाले श्रद्धालुओं की जत्थे भी जम्मू की तरफ रास्ते सफर बांध चुके हैं। तो प्रशासन के मुताबिक 57 दिनों पर मुश्तमिल श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज अब तक 4,76,683 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर चुके हैं, जबकि गुजश्ता रोज 5,095 श्रद्धालु ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। और जिला प्रशासन और मुतल्लिका महकमा मौसमियात की बदलती हुई सूरत हाल पर मुसलसल नजर बनाए हुए है। यात्रियों की सहूलियत, सुरक्षा और सुविधा के लिए तमाम जरूरी इंतजाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। जी सुमन
1: जी, बिल्कुल आपने एक अहम अपडेट अंतनाग से दी है। और चूंकि हम सब जानते हैं कि फिलहाल जो जम्मू से अमरनाथ यात्रा है उसको फिलहाल सस्पेंड किया गया है, फिलहाल मौसम की खराब सूरत हाल की वजह से इस तरह का कदम उठाया गया है, तो क्या कुछ अपडेट्स हैं, मतलब कब तक फिर ये बहाल होगी?
0: क्योंकि ये जो हमारे ही नुमाइंदे ने इससे पहले भी हमें इतला भेजी थी कि रामबन के आसपास जो बारिशों का सिलसिला थोड़ा सा ज्यादा था और वहाँ जो कुछ तूते गिर आए थे, कुछ ऐसा नहीं कि रास्ता बंद हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद रास्ते में कुछ रुकावटें पैदा हो सकती है जो आने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो इसलिए एहतियातन जो प्रशासन है उन्होंने ये फैसला किया है कि अभी मौसमियात की वजह से भी आज दिन जो पेशन हुई थी ये बारिशें होंगी, और खासकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग जहाँ कहीं कहीं पे कच्चे अभी पहाड़ी है जो खिसक जाते हैं, तो उनके मद्देनजर रखते हुए एहतियातन ये फैसला लिया गया है, ये निर्णय लिया गया है, ये आज दिन के लिए है। और आज दिन के लिए ऐसी मौसम की जो पेशनगोई हुई थी तो प्रशासन ने ये बेहतर समझा है कि नहीं, हम आज के रोज इसको थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, इसको मौतर रखेंगे ताकि किसी को कोई परेशानी
1: ना हो। बिल्कुल, धन्यवाद आपका तारिक साहब, आपने अनंतनाग से हमें अमरनाथ यात्रियों के हवाले से अहम अपडेट दी है, शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ एस तारिक जो कि अनंतनाग से हमारे संवाददाता हैं, जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों के हवाले से अहम अपडेट हम तक पहुंचाई है। और आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेवज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। चूंकि इस वक्त श्रोताओं, हम आप तक जो है 3 बजे की ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार दिन के 3 बजे तक कुल 3,169 जो हमारे श्रद्धालु हैं उन्होंने पवित्र गुफा के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 2,348 हैं और महिलाओं की संख्या 507 हैं। इसी के साथ बालकों की संख्या 21, साधु 19, साध्वी 4, ट्रांसजेंडर 3 और सुरक्षा कर्मियों की संख्या 267 जो है 3 बजे तक रिकॉर्ड हुआ है, जिन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन या पवित्र गुफा के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं।

और हम भी यही चाहते हैं, प्रार्थना यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो जम्मू रूट से यात्रा को सस्पेंड किया गया है वो जल्द से जल्द बहाल हो जाए, ताकि हमारे जो श्रद्धालु हैं, हमारे जो यात्री हैं, यात्री दोस्त हैं, वो बाबा बर्फानी या पवित्र गुफा के दर्शन उन्हें प्राप्त हो जाए और प्राप्त कर ले। और हमारी कामना है कि आपकी यात्रा सुखद रहे और सफल रहे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

0: जय श्री रतो। विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम और डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं रहीम रिजवान, जो कि गांधरबल से हमारे संवाददाता हैं। आइए इनके पास जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट्स हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से इनके पास। जी रिजवान साहब, बताइएगा क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास अमरनाथ यात्रा के हवाले से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त मैं बालतल बेस कैंप में मौजूद हूँ और मौसम की स्थिति जो बनी हुई है यहाँ पे, आकाश पे घने बादल छाए हुए हैं
0: जी,
1: और सुबह सवेरे से ही वर्षा हो रही है। लेकिन इस सुंदरता और खुशगवार मौसम के बीच जो सालाना श्री अमरनाथ की यात्रा है वो सुचारू रूप से जारी है
0: जी,
1: और यात्री सुबह सवेरे से जो पवित्र गुफा की तरफ निकल पड़े वो यहाँ पवित्र गुफा तक पहुंचे हैं, उन्होंने माथा टेका है तथा शिवलिंगम का दर्शन करके अब वो वापस सुरक्षित यके बाद दिगरे बालतल बेस कैंप की तरफ आ रहे हैं। और इस तरह अगर हम सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो अभी तक हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 956 यात्री जो हैं वो बालतल बेस कैंप पहुंचे हैं। यके बाद दिगरे बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले इन श्रद्धालु में 570 पुरुष, 192 महिलाएं, 6 बालक बालिका, 6 साधु और 182 जो सुरक्षा कर्मी हमारे हैं वो सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचे हैं
0: जी।
1: इस तरह हम कह सकते हैं कि जो अमरनाथ यात्रा है वो धार्मिक रूप से बालतल मुख्य मार्ग से जारी है। तो प्रशासन के हवाले से जो सुविधाएं रखी गई हैं और उसको लेकर यात्री संतुष्ट व्यक्त कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जिला प्रशासन गांधरबल ने इस बार बालतल मुख्य मार्ग से हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए कुछ तक की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। और अगर हम दो महत्वपूर्ण पड़ाव जो हमारे आते हैं कारगिल राजमार्ग पर, वो है ट्रांजिट कैंप शादीपुरा और ट्रांजिट कैंप मणिगांव, तो इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में जिला प्रशासन गांधरबल ने यात्रियों की सहायता के लिए कुछ स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। इसके साथ साथ जो सुरक्षा के हैं वो भी कड़े प्रबंध किए गए हैं और जिसको लेकर यात्री संतोष व्यक्त कर रहे हैं। और इसके अलावा शाम 5 बजे के बाद जो भी यात्री ट्रांजिट कैंप मणिगांव और ट्रांजिट कैंप शादीपुरा पहुंच रहे हैं उनको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है, बल्कि रात भर इन यात्रियों को इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में कायम करना पड़ता है। दोनों ट्रांजिट कैंपों में जिला प्रशासन गांधरबल ने कुछ स्तर की सुविधाएं रखी है, भोजन के हवाले से या रात्रि विश्राम के लिए जो इन्हें टेंट रखे गए हैं वहां उम्दा बेडिंग का भी इंतजाम किया गया है। इस तरह हम कह सकते हैं बीते दिनों की तरह आज भी बालतल मुख्य मार्ग से जो तीर्थ यात्रा है वो सुचारू रूप से जारी है। जी मैम
0: जी, तो फिलहाल चूंकि जम्मू से जो अमरनाथ सालाना यात्रा है वो फिलहाल सस्पेंड है और बालतल रूट से फिलहाल अमरनाथ जी यात्रा जारी है, तो क्योंकि ख़राब मौसम सूरत हाल की वजह से ये फैसला लिया गया है, इतने में हमारे जो आला हुकाम की जानिब से सुविधा है कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं हमारे यात्रियों के लिए?
1: बहुत उम्दा इंतजाम किए गए हैं कि मौसम विभाग के अनुसार घाटी में जो वर्षा की संभावना बनी हुई है तो लगातार वर्षा जो है हो रही है, बीच बीच में सैलाबी सूरत हाल भी पैदा होती है। तो ये हालात मद्देनजर रखकर जो प्रशासन ने निर्णय लिया है उनका ये मानना है कि यात्रा की जो सुरक्षा है वो महत्वपूर्ण है। प्रशासन

0: के लिए तो उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, और यात्रियों को भी चाहिए कि वो उनका निर्देशों का पालन करें। तो इसलिए आज अस्थायी रूप से जो यात्रा है वो स्थगित कर दी गई है। जम्मू से किसी भी यात्री को घाटी की तरफ आने की अनुमति नहीं दी गई है, लिहाजा वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए वो निर्णय लिया गया है, हमें उसका पालन करना चाहिए,
1: जी
0: और हम बिल्कुल खुश हैं इससे, और ताकि यात्री जो है वो पवित्र गुफा

0: आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जम्मू की ओर।
1: जी जी रहीम रिजवान साहब, आपने गांधरबल से हमारे जो यात्री हैं उनके लिए एक अहम अपडेट साझा की है, धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद आपका।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ रहीम रिजवान, जो कि हमारे संवाददाता गांधरबल से हैं। इन्होंने अमरनाथ यात्री या हमारे जो यात्री भाई हैं उनके लिए अहम अपडेट्स पहुंचाई हैं, और हम भी यही प्रार्थना करते हैं, दुआ हमारी भी यही है कि जल्द से जल्द अमरनाथ यात्रा जो जम्मू से सस्पेंड हुई है वो बहाल हो जाए, ताकि हमारे जो श्रद्धालु हैं, हमारे जो यात्री भाई हैं और यात्री दोस्त हैं, वो शिवलिंग के दर्शन प्राप्त कर ले, और वहाँ जो है श्रद्धालु जितने भी हैं वो अमरनाथ यात्रा या पवित्र गुफा के दर्शन प्राप्त कर ले। हमारी भी यही प्रार्थना है। फिलहाल तमाम यात्रियों की अगर बात करेंगे, उनकी यात्रा सफल रहे, सुखद रहे, हमारी कामना यही है। हमारे साथ बनी रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: जय जय बाबा बर्फानी।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज और डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। जी श्रोताओं, आपसे जैसे कि आप सब बखूबी जानते हैं कि फिलहाल जम्मू से ख़राब मौसम की वजह से सालाना अमरनाथ यात्री को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अगर आप या आपके सहयोगी इस मुकद्दस यात्रा पर हैं तो इस ख़ास नशरियात में सुरक्षा और सुविधा से जुड़े अहम हिदायत ये हैं कि मौसम और यात्रा अपडेट पर नज़र रखें। जम्मू कश्मीर प्रशासन और मकामी पुलिस की रोज़ाना की एडवाइजरी ज़रूर चेक कर लें और अपने पास पहचान पत्र और आपातकालीन नंबरों की हार्ड कॉपी ज़रूर रखें। श्रोताओं, इस वक्त घाटी में ख़राब मौसम की वजह से

फिलहाल जम्मू में जो यात्रा है वो सस्पेंड कर दी गई है और पहाड़ों पर मौसम तेज़ी से बदलता है और इसीलिए वाटरप्रूफ जैकेट और थर्मल वेयर साथ रखें। ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ का ही इस्तेमाल करें ताकि फिसलन भरे रास्तों पर पकड़ बनी रहे और हमेशा अपने समूह या साथी यात्रियों के साथ रहें और समय सीमा का ध्यान रखें। और प्रशंसक संदेश ये है कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे उत्तम है, मौसम और मार्ग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ें। बस हमारी प्रार्थना यही है, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी यात्रा सफल रहे, सुरक्षित और सुखद रहे। हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

0: जी श्रोताओं, हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से हमारे संवाददाता इमरान नायकू साहब जुड़ गए हैं फोन कॉल पर, जो हमें अमरनाथ यात्रा के हवाले से अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। जी इमरान साहब, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है यात्रियों के हवाले से।
1: जी बिल्कुल, देखिए आज अमरनाथ जी यात्रा श्रीनगर से, यहाँ से यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया, और आज सुबह पहला जत्था जो यात्रियों का था उसमें तकरीबन 150 से ज्यादा अमरनाथ जी यात्री थे, मेल फीमेल साधु साध्वी, जिन्हें सिक्योरिटी हैवी डिप्लॉयमेंट के बीच में बालतल की तरफ रवाना किया गया। उसके बाद मजीद कुछ यात्री जहाँ पे थे जिन्हें यहाँ से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया। ओवरऑल आज श्रीनगर सिटी की बात करें तो सुबह से मौसम बेहतर रहा, अलबत्ता इस वक्त हल्की बारिश यहाँ पे हो रही है, और इस बारिश की वजह से थोड़ी सी जो नॉर्मल लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई है। लेकिन जैसे कि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 9 तारीख से 11 तारीख तक खासकर जम्मू रीजन के अंदर हैवी रेनफॉल होगी और कश्मीर वैली में मॉडरेट रेनफॉल होगी, और आज चूंकि 8 तारीख है तो आज भी मॉडरेट कहीं कहीं इलाकों में बताया गया था कि हल्की बारिशें होंगी, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में बारिश हो रही है। अलबत्ता जो यात्री यहाँ कल पहुंचे थे उन्होंने नाइट स्टे यहाँ पे किया और आज सुबह उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया, और जो यात्री यहाँ पे रुकते हैं उनके लिए अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, यहाँ की जिला प्रशासन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है उनकी तरफ से सारी सुविधाएं रखी गई है ताकि अमरनाथ जी यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। और साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पूरी यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है और प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो ट्रांजिट के पहुंच के अमरनाथ जी यात्रियों से बात करते हैं और उनसे फीडबैक हासिल करें, और हम भी मुसलसल अमरनाथ जी यात्रियों से बात कर रहे हैं, और जो यात्री यहाँ कश्मीर पहुंच रहे हैं और यहाँ अरेंजमेंट्स को लेके जो प्रशासन की तरफ से उनके लिए सर्विसेज रखी गई है उन पर हम उनका फीडबैक हासिल कर रहे हैं, और एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव फीडबैक उनकी तरफ से आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मौसम की खराबी की वजह से यात्रा को कई बार यहाँ सस्पेंड करना पड़ा, और आज भी जम्मू से यहाँ अमरनाथ जी यात्री नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मायूसी हो रही है यात्रियों में। लेकिन अच्छी बात यह है कि 5 लाख से जायद अभी तक यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया है और अभी भी यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, और इन यात्रियों के लिए सारी सुविधा

0: यहाँ पे रखी गई है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से यात्रा को श्रीनगर से मॉनिटर किया जा रहा है। लोक भवन में जो श्राइन बोर्ड का जो सर्विलेंस है, मॉनिटरिंग सेल जो है, उससे यात्रियों की जो है मॉनिटरिंग और सर्विलेंस हो रही है ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो और हम देख रहे हैं कि इस साल भी यात्रा अभी तक पुरामन तरीके से जारी है और ये श्रावण की जो बारिशें हैं इसमें ये हम देख रहे हैं कि हर साल इस तरीके की बारिशें होना कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अलबत्त कहीं जो ये क्लाउड बर्स्ट या लैंड फ्लैश फ्लड्स की वजह से थोड़ी सी परेशानियां हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये क्लाइमेट की वजह से है। अदरवाइज जो यात्रियों के लिए यहाँ सर्विसेज रखी गई है, अरेंजमेंट्स रखे गए हैं, और वो प्रशासन ने पहले से ही इंश्योर किए थे और यात्री भी उनको लेके काफी प्रसन्न है, वो काफी फीडबैक के खुश नजर आ रहे हैं। कहीं हम भी बात करते हैं तो उनका नेगेटिव फीडबैक या उनकी कोई ग्रीवेंस नहीं है। ऑल्दो कि अगर उनकी कोई ग्रीवेंस भी हो तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जो ट्रांजिट कैंप्स है वहां पर ग्रीवेंस मैकेनिज्म उनके लिए एस्टैब्लिश किया गया है या हेल्प डेस्क वहां पे एस्टैब्लिश किए गए हैं, सो दैट अगर फिजिकली यात्री जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। और साथ ही ऑनलाइन फैसिलिटीज भी है कि वो प्रशासन से असिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। साथ ही सर्विस प्रोवाइडर्स लोकल्स यहाँ के या जो वॉलंटियर्स है वो भी इस यात्रा को लेके अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं या अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। सो हम देख रहे हैं कि कभी अमरनाथ यात्री कश्मीर की मेहमान नवाजी को लेके काफी इम्प्रेस है और एक यूनिक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जैसे हम भी उनसे बात करें और बार बार वो यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है और यहाँ के लोगों का व्यवहार है, यहाँ के प्रशासन के अरेंजमेंट्स है, यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन सब की काफी वो तारीफ कर रहे हैं। और इसीलिए सिर्फ कि जिस तरीके की यहाँ पे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, जो खिदमत वो पेश कर रहे हैं, और साथ ही हम देख रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे वो खरीद रहे हैं और लोकल फॉर वोकल जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अपील थी उसको भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यात्री बड़ी खुश असलूबी के साथ कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं और यहाँ स्टॉल्स पे जाके उन्हें एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यात्रा अभी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में मौसम बेहतर हो और इस यात्रा पर कोई असर ना पड़े उसका।
1: बिल्कुल इमरान नायकू साहब, आपका धन्यवाद है। श्रीनगर से आपने हमारे यात्रियों के लिए, यात्री दोस्तों के लिए एक अहम अपडेट पहुंचाई है, धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता इमरान नायकू, जिन्होंने अमरनाथ यात्रा या यात्रियों के लिए अहम अपडेट हम तक पहुंचाई हैं। और हम भी यही कामना करते हैं कि यूं ही हमारे यात्रियों का सफ़र जारी रहे और श्रद्धालु जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी यात्री हैं, उनका सफ़र यूं ही जारी रहे और शिवलिंग के प्राप्त जो दर्शन हैं वो कर ले। और हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

2024 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज और डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए भक्ति संगीत।

जी दोस्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और भक्ति का पवित्र अवसर है।

समस्या हो तो यात्रा से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण में हम आपको यात्रा के मुख्तलिफ पड़ावों से ताज़ा सूचनाएं, मौसम के अपडेट्स, यात्रियों के अनुभव और हमारे संवाददाताओं की विशेष रिपोर्ट्स भी सुनवाते हैं। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालें।

जी दोस्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा, भगवान शिव की तपस्या और अमर कथा से जुड़ी हुई एक बहुत ही पवित्र जगह है और यहाँ बनने वाला कुदरती हिम शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए भगवान शिव का पवित्र स्वरूप माना जाता है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ पहाड़ों की कठिन चढ़ाई नहीं है, बल्कि ये एक आत्मा की पवित्र यात्रा भी है। यात्रा का हर कदम हमें श्रद्धा, धीरज, त्याग, सेवा और मानवता का संदेश देता है। 2026 में बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले सभी श्रद्धालुओं पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे और बाबा बर्फानी सभी यात्रियों की यात्रा सफल, सुरक्षित और मंगलमयी बनाए और हर परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अता करे। आप सुनते रहिए शिव संगीत, भक्ति संगीत और हमारे साथ बने रहिए शाम के 6 बजे तक।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध।
2: जी श्रोताओं, 5:30 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं आरती।
3: सर्वे भवन्तु सुखिना।

सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी शिव भक्तों का बाबा बर्फानी जी के इस पावन पवित्र अद्भुत धाम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी शिव भक्त बड़े ही पुण्य कर्मी हैं, जो आप सभी आज प्रातःकालीन आरती के दर्शन कर रहे हैं। MH1 चैनल के माध्यम से जो भक्तजन देश एवं विदेश में बाबा जी की इस पावन आरती की दर्शन कर रहे हैं, वह भी बड़े ही पुण्यकर्मी हैं। प्रिय बंधुओं, ये जो धाम है, ये त्याग का प्रतीक है। इस धाम में जब बाबा बर्फानी जी ने मां पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने मार्ग में अपने सभी जो जैसे अपने गण, अपना श्रृंगार इत्यादि सभी का अपने मार्ग में ही त्याग कर दिया। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप भी इस त्याग को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि ये जो त्याग है, इस त्याग से ही आप बाबा बर्फानी से जो मिल सकते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु खड़ एते नित्य दुखिता। जो लोग दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने इस धाम में आकर कुछ सीखना है, तो यही सीखना है, हमने त्याग क्या करना है, हमने अपने अंदर की ईर्ष्या का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है, वो भी परमात्मा के साथ मिलन में एक वादा है। इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु, और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं, उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का जापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस धाम में हमें यही सीखना है, हमें ईर्ष्या करनी है तो अपनी अपने अंदर की बुराई से करनी है, घृणा करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है। हमें अगर संतोष हमारे अंदर नहीं है, तो किस चीज का नहीं होना चाहिए, परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए। और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर।

0: जय।
1: आप सभी भक्तजन बाबा के पवित्र धाम में बैठे हैं। कहते हैं भोले बाबा स्तुतियों से भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी भक्तजन आज भोले बाबा ने हमें अवसर दिया है तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

जी श्रोताओं, शाम के 6 बज रहे हैं। आप अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण सुन रहे थे FM बालतल, FM पहलगाम और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे सहायक इंजीनियर जावेद अहमद लोन और इरशाद अहमद लोन और उनके साथ शौकत अहमद खान, और मैं हूं आपकी अद्घोषिक सबरीना महराज और इस प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। श्रोताओं, इसी के साथ आज की ये सभा यही समाप्त होती है। आपकी यात्रा सफल रहे। दीजिए इजाजत। शुभ यात्रा।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

0: श्रावण मास के पवित्र अवसर पर प्रस्तुत है द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप जानेंगे श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। ओम नमः शिवाय।
1: नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, और हिंदू धर्म में सावन के महीने में शिव भक्त विभिन्न प्रकार से शिव जी की आराधना करते हैं और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अभिषेक करते हुए जल चढ़ाते हैं, यात्रा करते हैं। उसी कड़ी में आज प्रस्तुत है भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन। भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव के पास है, और यहाँ ब्रह्मगिरी नामक का पर्वत है। भगवान त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ विराजमान भी हैं, और यह जो शिवलिंग, ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यह सभी प्रकार के पुण्यों को प्रदान करने वाला और पश्चाताप का ये यह स्थान है। प्रस्तुत है श्री त्र्यंबकेश्वर स्तुति। त्रिशूलहस्ताय जटाधराय त्रिलोचनाय त्रिपुरांतकाय त्रैकालिकाय त्रिकवन्नये च नमोस्तुते त्र्यंबक शंकराय त्रक्षाय।

0: अस्ति कष्टानि विवदस्तस्य दूरी भवन्ति सत्वरम। महाराष्ट्र के नासिक नामक स्थान में गोदावरी के शुभ तट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर के इस स्तोत्र को भक्ति भाव से गाता है उसके कष्ट और विपत्तियाँ और पाप शीघ्र दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, जय त्र्यंबकेश्वर।
1: ओम नमः शिवाय। अभी आप इस कार्यक्रम में श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं।

0: जासु बचन रवि कर निकर।
1: राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरेउ जो चाहसी उजियार। श्रोताओ, मैं अकिंचन तुलसीदास अपने मुख रूपी द्वार की देहली पर राम नाम का मणिदीप रखकर आपके सामने आया हूं। सो क्यों? इसलिए कि इस अनुपम दीपक ने मेरे भीतर और बाहर जो उजाला कर दिया है, उस उजाले में मैं एक अलौकिक दृश्य देख रहा हूं। देख रहा हूं एक विशाल मानस, ऐसा सरोवर जिसमें मधुर मनोहर मंगलकारी यश का निर्मल और अथाह जल फैला है। किसका है ये यश? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बात ऐसी हुई कि मुनियों ऋषियों और महाकवियों द्वारा वर्णित इस कथा को मैंने अपने गुरु के मुख से सूकर क्षेत्र नामक तीर्थ में सुना था, किंतु समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहे हूं अचेत। मेरे गुरु ने कृपा करके बार बार मुझे कथा सुनाई और ज्यो ज्यो मेरी छोटी मति में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, त्यों त्यों मेरे मन में उजाला सा फैलने लगा। मन में ये संतोष उपजा कि उस लीला को मैं भाषाबद्ध कर पाऊंगा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरजुन मानि है जिन्ह कै विमल विचार। हे श्रोताओ, आज संवत 1631 मधुमास चैत्र की नवमी तिथि भौमवार है। आज इसी दिन सादर शिवजी को सिर नवाकर श्री हरि के चरणों में शीश रखकर मैं राम की गुणगाथा का आरंभ कर रहा हूं। शुक्ल पक्ष के अभिजित नक्षत्र की इस तिथि का दोपहर का समय ही समग्र चर अचर जड़ और चेतन प्राणियों को हर्षित करने वाली, जन जन के सुख की मूल, सभी लोगों को विश्राम देने वाली पावन राम जन्म तिथि है। भगवान ने जन्म क्यों लिया, सुनिए। दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित

दीनहीन गाय के रूप में धरती की रुदनपूर्ण विनती सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवगण भगवान की स्तुति करने लगे।

0: श्रोताओं, भूमि और सुरगणों को दुखी हुआ जान, शोक संदेह को हरने वाली अंतरिक्ष की निस्सीम गुफाओं को मानो गुंजायमान करती हुई गंभीर गगन गिरा सुनाई पड़ी।
1: जनी डर पहुं मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हूं नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बंस उदारा। हरि हूं सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय।
0: श्रोताओ, चलिए अयोध्या नगरी। रघुकुल मणि, धर्म धुरंधर, गुण निधि, ज्ञानी, हृदय में सारंग धारण करने वाले, भगवान की भक्ति में लीन महाराजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ देखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।

0: अंतिम आहुति देता हूँ। इसके बाद एकाग्रचित ध्यानलीन होकर किसी स्थान पर बैठे
1: रहें।
2: गुरुदेव, क्या कौशल्या को यहाँ नहीं बुलाया जा सकता?
3: क्यों राजन?
2: इसलिए कि एकाग्रचित होते होते मुझे लगता है कि मैं और कौशल्या हम नहीं हैं, कोई और दंपति है। और युगों पूर्व कल्प कल्पांत से पहले कहीं दूर घने जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं।
0: शांत राजन, नेत्र मूंदिए, यज्ञ पुरुष अग्निदेव का ध्यान कीजिए।
2: हाँ, कर रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ। आंखें मूंदते ही गुरुवर वहीं ध्यान चला जाता है। यही विधि बीते बरस खट सहस नीर आहार संवत सप्त सहस पुनी रहे समीर आधार।
3: ये तो शुभ लक्षण है राजन। युगों पहले की कोई तपस्या की स्मृति का उमड़ना शुभ लक्षण है।
2: लेकिन कौशल्या,
3: बुलाइएगा लेकिन अभी नहीं।
0: अब मैं समग्र समझा कि ये आहुति अग्निदेव को समर्पित करता हूं।

0: आंखें खोलिए राजन, प्रगति अग्नि चरु कर लीने।
1: तो राजन, वशिष्ठ मुनि के वचन, श्रृंगी ऋषि की मंत्र साधना और तुम्हारी भक्ति भावपूर्ण याचना पूरी होगी। यह लो, यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई।
2: मैं क्या कहूं भगवन, परमानंद में मगन हूं और हरस में हृदय समाए। आपकी असीम अनुकंपा के लिए दंडवत करता हूं। आपके दिव्य दर्शन से मैं अरे

0: अग्निदेव तो अदृश्य हो गए राजन, आपकी मंगल विधि संपूर्ण हुई। वशिष्ठ मुनि, मैं आपकी अतिथिशाला जाकर वहां विश्राम करूंगा।
1: अब बुलाइए महारानी कौशल्या को राजन।
2: प्रतिहारी, पटरानी को सादर यहां ले आओ।
3: जो आज्ञा।
1: अग्नि देवता के दिए हुए इस चरु में जो पायस है उसका आधा भाग इस स्वर्ण पात्र में अपने ही हाथों डाले राजन।
2: जो आज्ञा।
4: आर्य पुत्र, आपने मुझे ही बुलाया, किंतु कैकेयी और सुमित्रा भी तो वातायन के उस ओर पहुंचाने का आदेश दें।
2: ठहरो कौशल्या, बैठो। सुनो, जब श्रृंगी ऋषि द्वारा अंतिम आहुति देते समय मैं उनके आदेशानुसार आंख मूंद कर ध्यान मग्न होने लगा तो मुझे जान पड़ा कि युग युगों पहले किसी बीहड़ जंगल में तुम और मैं न जाने कैसी अंतहीन तपस्या में लीन बैठे हैं।
4: हाँ, हाँ, अरे पुत्र, आंखें मूंदते ही वो दृश्य इस क्षण मेरे भी सामने स्पष्ट होता जा रहा है। और फिर हम दोनों की तपस्या के बाद मांगू मांगू बरु भय नभपानी परम गंभीर कृपा अमृत सानी।
2: तब हम दोनों ने कहा, जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न हो ये वर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही यही कारण मुनि
4: जो फुसुंदी मन मानस हंसा सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा देख ही हम सो रूप परिलोचन कृपा करो परतारित मोचन।
2: क्या अलौकिक रूप था वो, उन चरणों की शोभा पद राजीव बरन नहीं जाहि मुनि मन मधुप बसही जिन माही।
1: हे राजन, आप दोनों उस जन्म में मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा थे। आज आप दोनों के उस महातप और भगवान के वरदान के फलस्वरूप।
2: वरदान? ओह, हमने कहा एक लाल सा बड़ उर माही सुगम अगम कहीं जात सुनाई।
4: तुम्हारी देत अति सुगम गुसाई अगम लागे मोहि निज कृप नाई।
2: तानि शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सद्भाव चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव।
1: और वो वर मिला, लेकिन वो रूप भूल जाइए महाराज, भूल जाइए आप। अब
4: कैसे भूल जाएं गुरुवर, भगवान ने स्वयं कहा था, मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहू न मिटही अनुग्रह मोरे।
1: देवी, भगवान स्वयं भुला देंगे और अवसर पड़ने पर स्वयं याद दिला देंगे, यही तो भगवान की लीला होने जा रही है। देवी, अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त इस पायस खीर का आधा भाग अपने पति से सादर ग्रहण करें। उठाइए ये स्वर्ण पात्र राजन, डालिए चरु में से पायस धीरे धीरे। हाँ, बस बस। प्रतिहारी, देवी कैकेयी और सुमित्रा को बुलाओ। आइए देवी कैकेयी और आइए देवी सुमित्रा, इधर बैठे। देवी कैकेयी, चरु में से आधा भाग लीजिए। राजन, अब शेष पायस को देवी सुमित्रा के स्वर्ण पात्र में डालिए। देवियों, इस दैवी प्रसाद को अब आप अंतकपुर में अपने अपने कक्ष में जाकर प्रसन्न वदन होकर पान करें।
5: यही विध गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी मंदिर में सब राजे ही रानी शोभा सील तेज की खानी। और जब चैत्र मास नवमी तिथि भोमवार को भगवान का जन्म हुआ तब समस्त देवताओं के समूह को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे। गंधर्वों का गान हुआ, सुमनांजलियों से विमल गगन छा गया और उसके बाद

व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। कैकेयी के भरत शत्रुघ्न और सुमित्रा के लक्ष्मण के जन्म होने के उपरांत चारों भाइयों की शिशु लीला मैं अकिंचन दासानुदास तुलसीदास भला कैसे करूं उस बाल लीला का वर्णन। बस सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। नामकरण हुआ चूड़ा कर्म संस्कार उपनयन और गुरु से शिक्षा। श्रोताओं

0: ये सब चरित मैंने गाया, अब मन लगाकर आगे का प्रसंग सुनिए। राजा दशरथ का दरबार, अवध नरेश, मुनि वशिष्ठ, चारों भाई और अन्य लोग।
1: महाराज, शुभ विपिन के अपने आश्रम में बसकर ज्ञान मनन तप करने वाले गाध तनय मुनिवर विश्वामित्र जी पधारे हैं।
2: हमारे धन्य भाग्य, सब उठकर उनका स्वागत करें।
3: बैठिए अवध नरेश, बैठिए मुनि वशिष्ठ। वास्तव में एक ही मनोरथ है मेरा राजन, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना।
2: ये आप किसकी बात कर रहे हैं मुनिवर? मेरा दंडवत स्वीकार करें।
3: आप नहीं समझेंगे राजन इस रहस्य को, पर मेरे बंधु वशिष्ठ समझ गए होंगे।
2: अस्तु। ये मेरे चार बेटे हैं मुनिवर। राम, चरण वंदन करो मुनिवर विश्वामित्र के। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। मुनि, अस कृपा ने की ने उकाओ, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लावो वारा।
3: असुर समूह सतावहि मोहि, मैं चाचन आयो इंद्रप तोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसिचर बध मैं होब सनाथा। देहु भूप मन हरहित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनक अति कल्याण।
4: राजन, यूं सहसा आपका मुंह खो जाना उचित नहीं। आप रघुवंशी राजाधिराज हैं, ये ठीक नहीं कि आपका हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। उत्तर नहीं महाराज।
2: गुरुदेव, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे हु विचारी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे अतिथि हैं और उस पर भी विप्र। मांगे हु भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिख एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनही गुसाई।

0: फिर ये भी तो सोचिए, कहने से चर्राती घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा।
1: वशिष्ठ जी आप ही अवध नरेश को आश्वासन दें।
2: राजन, पिता के मोह को अलंकार समझिए, कवच नहीं। आप क्षत्रिय हैं और आपका कर्तव्य है कि मुनियों के आश्रमों पर

0: इसलिए संदेह का नाश कीजिए। कौन जाने राम के इस अभियान के पीछे कोई ऐसा मंगल मुहूर्त, कोई ऐसी कल्याणकारी घड़ी बाट जोहती हो जिसका आपको अभी तनिक भी आभास नहीं है। इसलिए भूपवर, बहुविधेयी आशीष, आप उन्हें ऋषिवर को निशंक सौंप दीजिए।
1: आपका कहना ठीक है। राम लक्ष्मण आगे आओ। तुम क्षत्रिय पुत्र हो, भुजबल और आत्मबल दोनों की महिमा का ज्ञान गुरु वशिष्ठ से पा चुके हो। समझ लो कि अब तक प्राप्त शिक्षा का अभ्यास करने और शेष शिक्षा प्राप्त करने तुम मुनि श्रेष्ठ के साथ जा रहे हो, पर इधर इधर मेरे निकट आओ। तुम्हें हृदय से तो लगा लूं, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब अपनी जननी से विदा लेने अंदर चलो, आओ।
2: वशिष्ठ जी, मैंने तो महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना।

श्रद्धालु श्रोताओं, यों श्याम गौर सुंदर दो भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले। बीहड़ घना जंगल, रास्ते में मुनि को दीखी राक्षसी ताड़का। सुनी ताड़का क्रोध भरी धाई, श्री रामचंद्र ने धनुष खेचा। देखने में भयानक ताड़का, क्या वास्तव में राम की वैरी थी जिससे वे युद्ध करते? नहीं, देखिए एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान के ही निज पद दीना। उसके बाद विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। मुनि वृंद होम करने लगे और राम लक्ष्मण रखवाली। मंत्रोच्चार की ध्वनि कानों में पड़ते ही निशाचर मारीच और सुबाहु अपनी राक्षसी सेना लेकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते मारीच पर तो राम ने बिना लोहे के फल वाले बाण से ही ऐसा प्रचंड आघात किया कि वो सत जोजन जा सागर पारा। भीषण युद्ध होने लगा। राक्षस सुबाहु और उसकी सेना क्रोधावेश में उन्मत्त लहरों सी उमड़ पड़ी। तब राम ने अग्निबाण संधाना, पावक सर सुबाहु पुनि मारा और लक्ष्मण अकेले ही असुर सेना पर बरस पड़े। अनुज निशाचर कटक संहारा। आश्रम में निर्भय शांत निर्द्वंद्व यज्ञ कार्य चलने लगे। राम लक्ष्मण को पुरानी कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाने के बहाने उनके प्रति अपनी आंतरिक भक्ति ही से आप्लावित होने लगी। एक दिन मुनि ने कहा दोनों भाइयों से कि पुरानी कथाएं तो आपको अनेक सुनाई, चलिए कुछ वर्तमान चरित्र दिखाऊं। मिथिला में राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग उस नगरी की छटा और धनुष यज्ञ का मनोरंजन देखें, चलिए।

उस आश्रम में पत्थर की एक शिला देखी। विश्वामित्र ने कथा बताई। शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का पत्थर का शरीर है। क्यों? पति का शाप। अहल्या से इंद्र ने अपावन व्यवहार किया। पति ने दोनों को शाप दिया। अहल्या पत्थर बन गई। इंद्र को भयंकर रोग ने ग्रस लिया। राम, ये पत्थर की मूरत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्यों? गौतम

तम नारी साप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहि कृपा करहु रघुबीर। देखिए और सुनिए ये लौकिक अलौकिक लीला। राम अपने चरणों से शिला को छूते हैं और

0: इसके बाद गंगा पार करके राम लक्ष्मण मुनि के संग विदेह नगरी पहुंचते हैं। वहां की सभ्यता, वापी, कूप, सुमन वाटिकाएं, चौहट गलियां, चारू बाजार, मंगलमय मंदिर सभी देखे और देखे। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। लेकिन ऐसी अद्भुत जनक नगरी की शोभा और उसके सुभग नर नारियों का अवलोकन करने वाले ये दो किशोर बटोही जब सैर करने निकले, सारी नगरी वैभव ऐश्वर्य की भव्यता उन दोनों की दिव्य शोभा को देखकर मानो ठगी सी रह गई। श्रोताओं, धनुष यज्ञ से एक दिन पहले की संध्या, एक पुरातन प्रीति की जो निराली घटना घटी उसे सुने। राजा जनक की वाटिका जहां वसंत ऋतु की छटा फैली है, राम लक्ष्मण शोभा में रखने पहुंचते हैं और महिलाओं से पूछकर फुलवारी में फूल चुन रहे हैं। एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवारी में आ पहुंची। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम विवश सीता से जाकर बोली,
1: सखी देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गार के में कहां बखानी, गिरा अनैन नैन बिनवानी। अरे ये तो वही तो राजकुमार हैं, सुन हर्षी सब सखी से यानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी, एक कही नृप सुत देई आली, सुनिजे मुनि संग आए काली, जिन्हने जो रूप मोहनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहां तह सब लोगू, अवसी देख अही देखन जोगू। अरे राजकुमारी तुम चारों तरफ यूं कैसे देख रही हो, चकित बिलो कति सकल दिसि, जने से सुन रही सभी।
2: इस फुलवारी के सुमन अत्यंत सुहावने हैं, पल्लवों में वसंत की छटा विकस रही है, मुनिवर को भी भले लगेंगे।
3: सारा बगीचा ही परम रमणीक है। और ये सुना तुमने
2: क्या,
3: कंकन किंकिनि नूपुर धुनि,
2: तात
3: मानह मदन दुंदुभि तीनि, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनि।
2: कौन है ये जिन्हें देख के आपके भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित तजे दिगंचल।
3: तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई।
2: पर बात इतनी ही तो नहीं जान पड़ती तात,
3: जासु बिलोक की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा।

0: साथ आपकी टकटकी इस तरह लगती तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
1: सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता।
0: समझा समझा, मुझे तो आपका इस तरह ठगे से रह जाना ही बहुत भरा लगता है तात।
1: लक्ष्मण, मैं असमंजस में हूँ।
0: स्वाभाविक ही है तात।
1: वह बात नहीं, सुनो। रघुबन सिन कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु थरे ही नकाऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जे ही सपने हूँ पर नारी न हेरी।
0: लेकिन भगवान, विदेह कुमारी भी तो शोभा की सीमा ही जान पड़ती है।
1: पर लक्ष्मण, यह मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं गुरुओं द्वारा दिखाए पथ से विचलित हो रहा हूँ? वह आदर्श जिनके लहे ही न रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर तियमनु डीठी।
0: इस लता गुल्म में कुछ निराले ही फूल हैं, कुछ इनमें से भी चुने।
2: राजकुमारी, तनिक इधर आओ, यहाँ से देखो उस लता की ओट में वो रहे दोनों श्यामल गौर किशोर सुहाए।
3: सखी, क्या हमारी राजकुमारी प्रेम बस हो गए हैं?
2: कौन सच की बात है?
3: देखो ना, लता मंडप में से दोनों बिल्कुल बाहर आ गए हैं।
2: कैसे अपूर्व छविमान लग रहे हैं दोनों। निक से जनुजुग बिमल बिधु, जलत पटल बिल गाई।
4: जनक सुता तो गिरिजा की आराधना करने चली।
5: पूजन को विलंब हो रहा है सखी।
2: राजकुमारी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, बोप किशोर देखी कि नहीं ले हूँ।
4: सकुचो मत राजकुमारी,
2: नयन उधर कर देखो ना।
6: सन्मुख आमनी सामनी दो रघु सिंहों का अवलोकन करो।
5: सखियो, मुझे मुझे न जाने कैसा लग रहा है।
3: क्या हुआ, क्या हुआ राजकुमारी?
2: चित्त तो ठीक है ना?
3: कैसी बात पूछती है तू?
5: चित्त में आह्लाद भी है और क्षोभ भी। सखी,
3: क्षोभ क्यों?
5: सुमेर पिता बनु मन अति क्षोभा। और क्या कहूँ सखी?
3: सखियो, राजकुमारी को जो परबस देखकर मुझे भय लगता है, इन्हें अब ले चलना चाहिए।

0: मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के।
1: सुनु सिए सत्य असीस हमारी, पूजि ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलही जाहि मनु राचा। मनु जाहि राचेउ मिलही सो बरु, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीर, सनेहु जानत रावरो।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।